0: Logic.
1: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 12. Consent laws will be given a shake-up if National is re-elected. Rebecca Hunt has more.
2: National is promising to specify there must always be a yes rather than the absence of a no. Justice spokesperson Paul Goldsmith says it would clarify that silence is not consent, adding the change would reset social expectations. But Labour is questioning the timing, saying this reform is ready to go now after being developed by a cross-party group of MPs.
1: There has been a three-vehicle crash near Gisborne with police warning of black ice in the area. It happened on Wharirata Road, State Highway 2, just before 9. There were reports of no serious injuries. A cleaning company targeted in a damaging scam is urging customers to be vigilant. Rural Property Solutions Mid-Canterbury has just one job booked for the next 6 weeks after its reputation was tarnished by a copycat that's demanding fake deposits. Owner Richard Yeo says people can help by doing their homework.
3: Ask questions, look around, shop around, and if there's no reviews, no comments, no nothing, just walk away.
1: The US has launched a fresh wave of airstrikes against Iran in retaliation to the deaths of two service members. They were killed by missiles in Jordan and one is still missing. In sport, football updates brought to you by Hisense. England have claimed third place at the Football World Cup in a 10-goal thriller, 6-4 over France in Miami. England were ahead 4-0 at halftime. France scored three goals to open the second spell. It came down to Jude Bellingham to finish the game on TVNZ.
4: It's France who are backtracking. Bellingham, it's brilliant. Is it going to be number six? Oh, you bet it is. What a way to sign off at the end of the World Cup.
1: And Kiwi Ryan Fox is tied second after three rounds at the British Golf Open.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
5: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
6: Kia ora, bula, salam, namaste, sat sri akal. Main hu abhi aa gaya hu aapka saath dene ke liye, jabki aaj hai Sunday, 19th of July. Aise mein abhi se lekar 6 tak hamara aur aapka pyara sa saath bana rahega. Kya match hua tha aaj England aur saath mein France ke beech mein, agar jo aapne dekha hai ya fir nahi dekha to main aapko bata du. Ek thrilling encounter jahan par England ki jeet half time tak France ke khilaf 4-0 se ho rahi thi. Aur iske baad mein France ne comeback bhi kiya aur scores went up close as 4-3. Aur uske baad mein fir England ne manage kiya hold on karne ke liye aur finals ko to aapne jaise news mein bhi suna hai 6-4 से इंग्लैंड की जीत हुई है, जहां पर एक मैच में 10 गोल्स बनाए गए हैं और इसी के साथ बापे ने एक रिकॉर्ड सेट किया है, हाईएस्ट गोल स्कोर इन वर्ल्ड कप्स, जहां पर 22 गोल्स इन्होंने स्कोर कर दिया है वर्ल्ड कप की जो इनकी टैली है पिछले वर्ल्ड कप को भी मिलाकर. तो ये सभी कुछ है और इट सेट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर टुमोरोज ग्रैंड फाइनल. जब थर्ड और फोर्थ प्लेस में इतना टाइट और थ्रिलिंग एनकाउंटर था तो आप सोचिए कल सुबह जो मैच है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में कैसा मैच रहेगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी. लेकिन यहाँ पर और भी सारी बातें आपके साथ में करने को है, कुछ अपनी कहेंगे कुछ आपकी भी सुनेंगे. और आपकी सुनने के लिए तो नंबर हमारा है 5599, यहाँ पर आप अपना प्यारा सा टेक्स्ट हमारे पास में भेज सकते हैं. रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, साथ में 104.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका खास खास स्वागत है. देश में हैं या फिर बाहर देश में रोवा के द्वारा आप हमारे साथ में जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम के साथ में, और साथ देने के लिए आ रही हैं अलका याग्निक. एक प्यारा सा नंबर है और जो दिल का हाल है सोनू निगम बयां करने वाले हैं. वेलकम टू द शो, अभी का ढेर सारा प्यार.

हम पर रवि का साथ है और ये है जस्ट चिल आपके साथ में और कारोबार चलता रहेगा 6 तक। लेकिन आपको बता दे कि मौसम आज का कैसा रहेगा। आज के लिए बताया जाता है कि मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट 8 डिग्रीज तक हो सकते हैं और सनसेट रहेगा 527 के आसपास। इसके साथ साथ पार्टली क्लाउडी और आइसोलेटेड शावर्स भी हो सकते हैं। चांसेस है कि शायद आगे चलकर आफ्टरनून में ये क्लियर भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते खास। लेकिन ये जो वेदर रिपोर्ट था खासकर ओकलैंड के लिए, अगर जो नेशनल देखे तो काफी जगहों पर इसी तरह का वेदर है। नॉर्थ आइलैंड में ऊपर कायताया से लेकर वेलिंगटन तक ये बताया जाता है कि मिक्स्ड वेदर है, धूप भी रहेगी साथ में, ओकेजनली शायद आपको सनशाइन भी देखने को मिले। इसी तरह का वेदर है नीचे साउथ आइलैंड में भी, तो अगर जो आप सुन रहे हैं हमें तो थोड़ा ग्लूमी ग्लूमी सा वेदर है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कल से वापस स्कूल्स भी खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल रहे हैं, इस पर भी बातें करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आगे थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि फेसबुक पेज पर हमने क्या अपलोड किया है, इसके बारे में भी आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको भी कुछ खास सुनना है, जबकि आज 19th जुलाई है, आपकी जन्मदिन है, तो हमारी ओर से आपको वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है जिसे आप बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप 5599 पर हमारे पास में मैसेज कर सकते हैं। या फिर कुछ अलग सुनना चाहते हैं, कोई आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो इसका भी आप जो है डेडिकेशंस आप 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कर सकते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और बातें करते हैं अब उनके बारे में जो आपको बड़े प्यार से, जो दिल में उनके प्यार होता है वही प्यार उनके आंखों में भी होती है और उसी प्यार से ये आपको देखते हैं। इतना सेल्फलेस प्यार मैंने कभी नहीं देखा है। जो प्यार की हम बातें कर रहे हैं कि सेल्फलेस है, यानी कि खुद के बारे में नहीं सोचते हुए बस आपके साथ में रहना चाहते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी आप इनसे वापस कहीं दूर से आते हैं, शायद काम पर से आते हैं, नौकरी पर से वापस आते हैं घर पर, तो बड़े प्यार से आपको देखते हैं। जी हाँ, बातें कर रहे हैं पेट्स के बारे में, पेट्स के बारे में। जबकि इस साल जो नेशनल पेट डे था, ये लगभग कुछ अप्रैल 10 को सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन आपके साथ में हमने सोचा चलो थोड़ा सा शेयर करें कि आपको भी मौका दे अपने पेट के बारे में बताने का या फिर बात करने का, जिसे आप बहुत प्यार से, अफेक्शन से आप अपने पास में रख रहे हो। तो हमने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट अपलोड किया है जहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने प्यारे से पेट का जो एक पिक्चर है, फोटोग्राफ है, अगर जो आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे एंड इनको भी आप अफेक्शन देते हैं, आई एम प्रीटी श्योर। और कुछ लोग होंगे जो शायद पेट रखने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो आपके पास में मौका है। अगर जो आप खास करके डॉग्स रखना चाहते हैं एज पेट्स, तो SPCA आपको फोस्टरिंग अ पेट देने का मौका दे रहा है, जहां पर आप SPCA के साथ में टच में होकर आप ऐसा कर सकते हैं कि पुट योर नेम अप एज अ फोस्टरिंग पेरेंट पेट, यानी कि आप किसी पेट को आप घर लेकर जाकर कुछ ट्रायल पीरियड के लिए रख सकते हैं और यू कैन चेक इट आउट कि क्या ये आपको जचता है या नहीं, क्योंकि पेट्स रखना भी एक कमिटमेंट जैसा है। इट्स अ लाइफ टर्म कमिटमेंट और आपको उसी तरह से आपको कंटिन्यूसली लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या आप तैयार है या नहीं, और अगर जो आप चेकआउट करना चाहते हैं आप पेट लेने से पहले, ये मौका है जहां पर आप एक पेट को फोस्टर कर सकते हैं और जैसे नहीं कहते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं कि ये कमिटमेंट आपको आपके वर्क लाइफ के अराउंड, आपके फैमिली लाइफ के अराउंड, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के अराउंड ये आपको हेल्प करता है या नहीं। तो ये मौका है आपके पास में, SPCA दे रहा है, यहाँ पर जाकर आप ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा है, फेसबुक पेज पर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपने पेट्स के लिए एक फ़ोटोग्राफ डाल सकते हैं। शायद आपने एक कैट रखा हो या फिर एक डॉग रखा हो, कुछ लोग मैं जानता हूँ जो बर्ड्स भी रखते हैं घर में बड़े प्यार से, तो आप ये पिक्चर्स जो है हमारे साथ में अपलोड कर सकते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर अभी का साथ है और जो बातें कर रहे थे पेट्स के बारे में जो फेसबुक पेज पर हमने एक पोस्ट डाला है यहाँ पर दो पेट्स का फोटोग्राफ्स आ गए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे पिक्चर्स हैं स्नोई और पाइपा का जो फोटोग्राफ्स है ये इनके प्राउड ओनर ने अपलोड किया है आपके पास भी कुछ पिक्चर्स है इसके बारे में आप बताना चाहते हैं हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो जाइए हमारे हम फेसबुक पेज पर और यहाँ पर पोस्ट के नीचे आप अपने पेट्स के पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं इतना ही सिंपल है अपने पेट का नाम रखिए और पिक्चर्स जो है आप अपलोड कर सकते हैं इसके साथ साथ एक क्विज है हमारे पास में इसके बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं क्या आपको पता है अगर जो मैं आपसे कहूं कि मैं जंगली जलेबी खा रहा हूं एक फ्रूट है जंगली जलेबी जो मैं खा रहा हूं तो इसका इंग्लिश नेम क्या हुआ जंगली जलेबी का आप हमें ये 5599 पर बताइए कि जंगली जलेबी का इंग्लिश नेम अंग्रेजी में से क्या कहते हैं कौन सी ये फ्रूट है अगर जो आपको अंदाज़ा है तो 5599 पर अपना जवाब हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा और उसी जवाब में आप भेज सकते हैं किस गीत को आप सुनना चाहते हैं और जो रिक्वेस्ट है आप इस जवाब के साथ में भेज सकते हैं जंगली जलेबी एक ऐसी फ्रूट है इसका इंग्लिश नाम हमें चाहिए

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में ठीक एक बज चुके हैं और ऐसे में इस आवा पर आपका खास स्वागत करते हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर मैं हूं अभी 19 जुलाई का ये सफर है और 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। बातें हो रही थी कुछ फ्रूट्स की, जी हाँ, जंगली जलेबी की। और जबकि ये सवाल हमने किया था कि जंगली जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम क्या है, तो जवाब सिर्फ दिया है राम ने और साथ में अक्षत ने, और इन्होंने सही पहचाना। जो जंगली जलेबी है इसका जो इंग्लिश कॉमन टर्म से इसे मनीला टेमरिन बुलाया जाता है और साथ में मद्रास थोन भी कहा जाता है। इसका जो एक्चुअल फैक्चुअल नेम है पीथेसेलोबियम डल्से। इसका जो पेड़ है यहाँ आपको ज़्यादातर मिलेगा पैसिफिक कोस्ट में और साथ में मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका जैसी जगहों पर ये मिलेगा। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में भी आपको ये मिल सकता है। जो पीथेसेलोबियम डल्से है एक पेड़ है जो लगभग 10 से लेकर 15 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और इसी पेड़ पर ये फल लगते हैं जिसको हम बोलते हैं मनीला टेमरिन या मद्रास थोन। इसके साथ साथ जो इंग्लिश नेम्स है मनीला टेमरिन, ये कहा जाता है कि काफ़ी मिसलीडिंग है क्योंकि ये ना तो टेमरिन है ना तो नेटिव टू मनीला है, यानी कि ये मनीला में नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन जंगली जलेबी के बारे में आपको बता रहे थे जो नाम है मनीला टेमरिन और साथ में मद्रास थोन। और एक और एक कोई कॉन्टेस्ट आपके लिए इसी आवा पर लेकर आएंगे जहां पर आपके नाम को हम शामिल करेंगे ड्रॉ में। किस ड्रॉ में शामिल होगा? करण ओजला ये लेकर आ रहे हैं अपना पॉप कल्चर वर्ल्ड टू अ फेस क्लास जो कॉन्सर्ट है, ये ओकलैंड लेकर आ रहे हैं और इनके साथ में जो स्पेशल गेस्ट रहेंगे इकी, ये परफॉर्म करने वाले हैं स्पा करीना में ऑन द 25th of August। और इसके लिए आपको डबल पासिस चाहिए ना, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा कि आपको बहुत ध्यान से हमारा प्रोग्राम आज सुनना होगा क्योंकि इसी आवा पर किसी जगह पर करण ओजला का जो गाना है ये आपके लिए हम बजाएंगे। और आपको सिर्फ क्या करना है, उस गाना का जो नाम है वो आपको टेक्स्ट करना होगा विद द कीवर्ड्स KA, और जैसे ही वो गाना का नाम KA के साथ में और अपने नाम के साथ में आप हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट करोगे, आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जहां पर ये डबल पासेस शायद आपके हाथ लग सकते हैं। तो इतना सिंपल है और इस आवा पर ये खेल आपके साथ में खेलेंगे, तो कीप हमिंग, सुनते रहिएगा हमारे साथ में। करण ओजला काफ़ी फेमस है, फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाया है एंड आई नो आप इनको सुनने को देखने को बिल्कुल बेकरार है। तो इनका जो कॉन्सर्ट है ये होने जा रहा है, इसके लिए बिल्कुल तैयारी आपने कर ली है और इनके लिए जो टिकट्स है आप चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो आपको hum.rova.nz पर जाना होगा या फिर livenation.co.nz पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस हवा पर आप दिल दाम कर बैठिए क्योंकि किसी जगह पर करण ओजला का जो ट्रैक है ये लग सकता है।

0: She blazing like my reefer.
1: Yeah.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में इन इट्स 18 मिनट्स आफ्टर वन। और मैं आपसे बता दूं कि काफ़ी लोगों को टिकट चाहिए भाई करण ओजला के कॉन्सर्ट के लिए। और जब मैंने फ्रूट के बारे में सवाल पूछा था तो मुझे लगा कोई सुन ही नहीं रहा, सिर्फ राम सुन रहे हैं और साथ में अक्षत सुन रहे थे। लेकिन अभी कुणाल और साथ में रोशन और इसके अलावा सृष्टि और स्वाति, आप सभी का मैसेज आ गया है और आपके लिए आपके नामों को ड्रॉ में शामिल कर दिया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक। और जी हाँ, आपने सही पहचाना था, बीच में तरीफा लगी थी करण ओजला की आवाज़ में और आपने मौके पर चौका मारा है। और इधर बातें करते हैं, जबकि पेट स्टोरीज की बात हो रही थी, आपके अडोरेबल अडोरेबल पेट्स के बारे में बात हो रही थी, तो जो फेसबुक पर जो पोस्ट डाला है, यहाँ पर दो पेट प्यारे प्यारे से और शामिल हुए हैं। कुकी भरानी की ये पेट है, कुकी ये तो काम करते हुए लैपटॉप पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ में सोनिया ने स्कूबी का पिक्चर अपलोड किया है। तो अगर जो आप ब्यूटीफुल पेट्स का पिक्चर्स देखना चाहते हैं या फिर आपके खुद के पेट्स हैं, आप जाकर इस पोस्ट पर अपलोड कर सकते हैं अपने पेट का एक प्यारा सा फोटोग्राफ, और यही करके आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ अभी आपके साथ में, और आपको बता दूं स्ट्रेट आफ्टर टू आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज भी रहेगा। इन द मीन टाइम सुनते हैं सनम पुरी को।

विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Crispy on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide. Half price at Briscoe's half price sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
3: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie. Tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
4: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
0: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
8: Just Chill में मैं हूँ अभी आपके साथ में और एक कम्युनिटी न्यूज आपको बता देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं. क्यूवी फिन एक इमिग्रेशन एडवाइजर है जो इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट्स एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट और विद हम एज द मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं विद द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. आप अगर जो इस ड्रामा को देखना चाहते हैं, बहुत ही मेहनत किया जा रहा है इसके पीछे, जबकि मास्टर अशोक है और इन्होंने काफ़ी तैयारी की है. तो ये 8 अगस्त को रहेगा ऑन सैटरडे और रामलीला जो है 5 PM से इसकी शुरुआत होगी और आपको सिर्फ जाना होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोए, जिसके लिए टिकट्स लगेंगे और टिकट्स है $10 पर पर्सन और चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर फ्री. तो अगर जो आप एक इंटरेस्टिंग मौका देख रहे हैं जहां पर आप अपने बच्चों को रामायण के लिए और रामायण के साथ में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो आप यहां पर जाकर उनको ये ड्रामा दिखा सकते हैं, रामलीला दिखा सकते हैं. और जानकारी के लिए, टिकट्स के लिए या फिर आप स्टॉल रखना चाहते हैं उस नाइट पर, तो मास्टर अशोक को 02117954599 पर कॉल करें. 02117954559 पर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. ये सभी कुछ हमारे साथ पे हैं और याद रहे 2 पर आपके लिए समाचार भी रहेंगे और स्ट्रेट आफ्टर न्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि 20 मिनट बाकी है 2:00 पर आपके लिए समाचार रहेंगे। और जो फेसबुक पेज हमारा है जहाँ पर पोस्ट हमने कहा था आपको अपलोड करने के लिए, पोस्ट पर फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए हमने आपसे कहा था कि आप अपने पेट्स के जो पिक्चर्स है प्यारे प्यारे से क्यूट से, ये अपलोड कर सकते हैं। तो ख्वाहिश ने मिंक का जो फोटो है ये अपलोड किया है, बहुत प्यारा सा एक पेट है। और इसके साथ में आदि ने अपने पेट जेरी का फोटोग्राफ जो है अपलोड किया है, और इसके साथ में ढेर सारे और है ऐसे फोटोग्राफ जो बारी बारी से अपलोड हो रहे हैं। तो आप जाकर इस पोस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर जो आपके पास में पेट नहीं है तो यहाँ पर जाकर इन क्यूट फोटोग्राफ्स को आप अपना प्यार दे सकते हैं विद अ लाइक और लव, ऐसा ही आप शावा कर सकते हैं उनके साथ में। तो याद रहे ये जो फेसबुक पेज पर जो पोस्ट है इसको आपकी प्यार की ज़रूरत है, आपके पास में पेट्स है, और अगर जो अभी तक आपने फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किए, ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर आप अपने प्यारे प्यारे क्यूट पेट्स का जो फोटोग्राफ्स है हमारे साथ में हमारे पेज पर शेयर कर सकते हैं।

0: Just chill.
1: हम पर अभी का साथ है 104.2 FM साथ में रोवा पर आप मुझे सुन रहे हैं, ये है जस्ट चिल, 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा।

0: जी हाँ, हम पर रवि का साथ है। 2:03 हो रहे हैं। ऐसे में अब समय हुआ समाचारों के बाद में आपके साथ में खेले एक इंटरेस्टिंग गेम, जिसे एवरी वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसका नाम है एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर आपको एक गाने के बारे में बताते हैं, कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ ट्रिविया देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बेस्ड ऑन दोज क्लूज आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि किस गाने के बारे में बात हो रही है। उस इन्फॉर्मेशन के दौरान आपको फिल्म का भी नाम पता चलेगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद में आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना होता है कि किस गाने के बारे में बात हो रही है। बाद में आपको गाना भी सुनवाते हैं, लेकिन ये जो समय होता है आपको, जैसे हम क्लूज देना शुरू करते हैं वहाँ से, और गाना बजाने से पहले ही आपको जवाब भेजना है। किस नंबर पर? 5599 पर, अपने नाम के साथ में। जो सबसे पहले गाना पहचान कर अपना जवाब भेजता है वही विनर ठहराता है। जैसे कि लास्ट वीक क्वीन ने बाजीगर के टाइटल ट्रैक को पहचाना था और सबसे पहले अपना मैसेज हमारे पास में भेज दिया था, उसके बाद में वो ठहरी थी लास्ट वीक की विनर। तो क्या उसे कोई इस वीक डीथ्रोन कर पाएगा? बस यही जानना है। तो बिल्कुल रेडी है आप? मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। फ्लेक्स योर फिंगर्स, और 5599 इज़ द नंबर। और ऐसे में आपको अभी से बता रहे हैं क्लूज के बारे में, और ध्यान से सुनिएगा। हियर इट गोज। 2009 की फिल्म है, राजकुमार हिरानी प्रेजेंटेशन। 3 दोस्तों की कहानी जो इंजीनियरिंग स्कूल में 7 में पढ़ते हैं, उसमें से एक गुम हो जाता है और बाकी 2 दोस्त ढूंढने की कोशिश करते हैं। टैगलाइन ऑफ फिल्म, डोंट बी स्टूपिड, बी एन इडियट। एक और एक बहुत आइकॉनिक लाइन है इस फिल्म की, चलो उसे भी आपको सुनवा देते हैं। एंड हियर इट गोज।
1: किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो।
0: तो ये थी वो लाइन उस फिल्म की जो काफी फेमस हुई थी, और बहुत सारे हिलेरियस मोमेंट्स हैं इस फिल्म में, और एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर यानी दबाव को भी अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया है। इस फिल्म की स्टार कास्ट को हेडलाइन किया था आमिर खान ने, जिसकी आवाज़ अभी आपने सुनी, और जब उन्होंने ये फिल्म की थी जहां पर उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट प्ले किया था, तो वो थे 44 ईयर्स ओल्ड उस समय। एज अ कंपेरेटिव पॉइंट, बमन ईरानी जिन्होंने इस फिल्म में प्रोफेसर का रोल किया है, वो सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं आमिर खान से, और अपने रोल को कन्विंसिंगली निभाने के लिए आमिर ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया था, लेकिन अभी हाल में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस यूथफुलनेस को पकड़ने के लिए उन्होंने अपने नेफ्यू के मैनरिज्म्स को, जैसे बैठने के अंदाज को भी, चलने के अंदाज को भी पकड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने नोटिस किया था इनके जो नेफ्यू है ये स्टिल यानी स्थिर नहीं रहते, और उसी बेसिस पर उन्होंने अपना करेक्टर बेस किया था। आपको ये बता दे, जवाब आने लगे हैं, लेकिन आपको गाना भी पहचानना होगा। आमिर के साथ में फिल्म में माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर जैसे आर्टिस्ट थे। आपको फिल्म का पता तो चल गया है, अब सोचना यह है कि इस फिल्म से गाना कौन सा लिया है। कुछ ट्रिविया है जो आपके साथ में बांट लेते हैं। आमिर से पहले फिल्म ऑफर हुई थी शाहरुख खान को, पर डेज को लेकर कहीं ना कहीं कोई चक्कर चला था, और इस फिल्म का उस समय ओरिजिनल नाम इडियट्स था, लेकिन फिल्म के टाइटल को किसी और ने रजिस्टर कर रखा था, और फिर फिल्म के नाम को बदल कर 3 इडियट्स रखा गया। अब गाने पर आते हैं। इस गाने को सबसे पहले मेजली शान को गाना था एज अ लीड वॉइस, लेकिन फिर कुछ चेंजेस हुए और शान को फिर बिट्स एंड पार्ट्स में ये गाना दिया गया। इसको लेकर शान कुछ खुश नहीं थे। सोनू निगम ने आमिर खान के पार्ट्स को गाए हैं और शान को फिर बहतियावा गाना दिया गया। शान, जैसे कि मैंने कहा, इनिशली काफ़ी अपसेट थे, लेकिन फिर बाद में ओवर द ईयर्स बहतियावा गेन्ड इट्स पॉपुलरिटी। जिस गाने को आज हमने लिया है, इस गाने का रेफरेंस फिल्म में था एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, जो एक मंत्र की तरह काम करता है। ये फ्रेज आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपको आपके प्रॉब्लम्स को फेस करने का कर्ज देगा। जी हाँ, ये जो मंत्रा है कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन कर्ज देगा आपको उसको फेस करने के लिए। बस वही मंत्रा पर यह गाना बेस किया गया है, और ये इस फिल्म का सबसे पहला सॉन्ग भी है। इस फिल्म की स्टार कास्ट एक बार फिर से, आमिर खान, माधवन और शर्मन जोशी, और ये एक इनकी रियूनियन फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने तीनों ने 2006 की फिल्म रंग दे बसंती साथ में किया था। इस फिल्म को माइंड बोगलिंग 64 अवार्ड्स दिए गए थे अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इन अवार्ड सेरेमनीज। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है शांतनु मोइत्रा ने और गाने के लिरिक्स लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने। अगर जो आपको जवाब पता है तो भेज दीजिए, क्योंकि अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वही गाना जिसे आपको आइडेंटिफाई करना।

हाँ, ऑल इज़ वेल। और सोनू निगम ने बहुत ही बेखूबी से इस गाने को निभाया है और आपने पसंद भी किया था इस गाने को भी, इस फिल्म को भी। और फिल्म की बातें करें तो लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था इसे, बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी चली थी। अगर जो आपने इसे चेकआउट नहीं किया है तो इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम कि आप इसे देख सकते हैं या फिर रिविजिट करना चाहते हैं। सो वन ऑफ दोज मूवीज़ जिसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं और इन्जॉय भी करेंगे। लेकिन अब लौट कर आते हैं वापस जवाब की तरफ, जहाँ पर काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। साथ में 6759 आपने सही पहचाना था, आपने नाम तो नहीं लिखा, कोई बात नहीं। इसके बाद में 99433 आपका भी जवाब आया। साथ साथ में फाल्गुनी आपने सही पहचाना, साथ में गाना भी सही आपने आइडेंटिफाई किया। मोहिनी आपका भी जवाब आया। इसके साथ साथ 6759 दोबारा आपका मैसेज आया है। और इसके अलावा 4710 आपका भी जवाब आया। एडी आपने भी सही पहचाना दोस्त। और इसके अलावा अंकुर आपका भी जवाब आया था, सलमा आपने भी जवाब भेजा था, और साथ में कुनाल आपने भी ट्राई किया था। लेकिन जो सबसे पहला मैसेज आया था ये था दिवनेश आनंद का। जी हाँ दिवनेश, आपका मैसेज सबसे पहले आया। तो इस वीक के जो विनर हैं आप ठहरे हैं, और जितने लोगों ने ट्राई किया, कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ में खेलते रहिएगा। अगले वीक आपके लिए एक और एक चैलेंज लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज में। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और लुक फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए जो अगला चैलेंज रहेगा आपके साथ में खेलेंगे। इन द मीन टाइम आगे के लिए आपके हम लिए पेश करने जा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना, जितने लोगों ने खेला है, पार्टिसिपेट किया है, खास आपके लिए।

हम पर रवि का साथ है और जबकि बातें हो रही थी फेसबुक पेज पर जो पेट्स के पिक्चर्स आपको अपलोड करने थे, तो काफ़ी लोगों ने इसको रिस्पोंड किया है एंड सच अमेजिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स यहाँ पर अपने अपने पेट्स के डाले हैं। आदि ने अपने पेट कुकी का पिक्चर डाला है, आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अलग फोटोग्राफ आया है, दीपा ने अपलोड किया है अपने ब्यूटीफुल इंडियन रिंगनेक पैरट्स का, जो इनके पेट्स है पैरट्स, और इनका नाम दिया है जो नीला रंग का है इनका नाम है ओम, और जो येलो रंग का है इसका नाम है मीरा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स है अपने अपने पेट्स के अपलोड किए गए हैं। आपके पास में भी एक प्यारा सा पेट है जिसका फ़ोटो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो हम फेसबुक पेज पर जाइए, यहाँ पर एक पोस्ट हमने डाला है जस्ट चिल पर, जस्ट चिल प्रोग्राम के लिए, यहाँ पर आप अपने पेट्स का जो फोटोग्राफ्स है पिक्चर्स है आप शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं।

0: जी हाँ, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और आपके साथ में मैं हूँ अवि। जस्ट चिल का प्रोग्राम है, कारवा है, जो कि 6 तक चलता रहेगा। आज है 19th of July, ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। अब समय हुआ आपको सुनवाए अगला जो गाना है, एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में कि जो आपके साथ में अक्सर रहते हैं। जी हाँ, 20 हफ्ते में ये मिडल वीक में आपके लिए लेकर आते हैं लंच बॉक्स, और इनकी आवाज़ में ही आपको सुनवाने जा रहे हैं सफ़ायर 2.0। केतन के बारे में बात हो रही है, जो आपका साथ देते हैं 12 से लेकर 3 तक, और इनकी आवाज़ में जो गाना है सफ़ायर 2.0, जो कि ओरिजिनली एड शीरन साथ में अरिजीत सिंह ने गाया था और एक ग्लोबल हिट हुई थी, उसका एक न्यूजीलैंड यानी कि कीवी वर्जन केतन ने बड़े मेहनत और प्यार से बनाया है। और अगर जो अभी तक आपने इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो यूट्यूब पर बिल्कुल अवेलेबल है, आप जाकर सर्च कीजिए सफ़ायर 2.0, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ब्यूटिफुली जो न्यूजीलैंड की ब्यूटी है, प्रिस्टीन ब्यूटी, इसको कैप्चर किया गया है। केतन ने काफ़ी मेहनत किया है, ना सिर्फ गाने में बल्कि वीडियो बनाने में भी, तो ऐसे में आपका प्यार उसके लिए बनता ही है। आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा और अभी के लिए इस गाने को आपको सुनवाते हैं।
1: ये

हम पर रवि का साथ है और आपको बता दें राहत फतेह अली खान ये आकर परफॉर्म करने वाले हैं द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड ऑन द 25th ऑफ जुलाई यानी कि इसी कमिंग वीक. इनको लेकर आ रहे हैं प्राउडली जे के स्टार प्रोडक्शंस, साथ में गोट लाइफ, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन. अगर जो आपको टिकट्स चाहिए आपको जल्द से जल्द लेना होगा क्योंकि ये ज़्यादा देर तक बचने वाली नहीं है, टिकट्स रुकने वाली नहीं है. आपको dryTickets.com पर जाकर राहत फतेह अली खान को अगर जो लाइव देखना चाहते हैं तो dryTickets.com पर जाइए, अभी ही टिकट्स ले लीजिए क्योंकि एक ऐसी रात होगी जहां पर ये अपने खूबसूरत अंदाज में, सुरीले अंदाज में आपके लिए पेश करेंगे कवालियां, साथ में अपने गाए हुए सूफी सॉन्ग्स को. फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी धूम मचाया है तो एक ऐसा मौका जहां आप इनको रूबरू और लाइव स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं. 25th ऑफ जुलाई द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड में इनका शो रहने वाला है. dryTickets.com पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं. जबकि म्यूज़िक के बारे में बात हो रही है, कल से मैं लेकर आ रहा हूं कुछ दिनों के लिए नाइट कैफ़े आपके लिए, और जो कि नाइट कैफ़े 8 PM से इसकी शुरुआत होगी तो उसमें भी हमारा साथ दीजिएगा. लेकिन नाइट कैफ़े को लेकर मैं कुछ रिसर्च कर रहा था म्यूज़िक को लेकर, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिला है लेकिन मैं अभी नहीं दूंगा आपको. आपसे पूछूंगा, एक सवाल करता हूं कि बॉलीवुड में काफ़ी ऐसे ऐसे पहुंचे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने राइट थ्रू 60s या फिर उनसे पहले भी काफ़ी अच्छे अच्छे म्यूज़िक दिए हैं ओवर द ईयर्स. तो अपने अपने समय के दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा काम किया है. मेरा सवाल आपसे ये है, आप ऐसे जोड़ियाँ बताएं जहाँ पर बॉलीवुड में फादर यानी कि उनके पिता ने भी म्यूज़िक दिया है और आगे चलकर उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके सन ने भी म्यूज़िक दिया है. तो ऐसी जोड़ियों का नाम बताएं, कुछ लग मेरे ख्याल से 2-3 हैं. इन पेयर्स का नाम बताइए जहां पर फादर भी, पिता भी एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे और उनके सन भी आगे चलकर म्यूज़िक डायरेक्टर बने. अगर जो आपको मालूम है इन पेयर्स का नाम, 5599 इज़ योर मैजिक नंबर, यहां पर भेजिएगा हमारे साथ में. इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है कि बॉलीवुड में फादर एंड सन एट द ओन टाइम्स जहाँ पर इन्होंने म्यूज़िक कंपोज किया है फिल्मों में.

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

हम पर बातें हो रही हैं आपके साथ में, और हमने पूछा था आपसे कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, जहां पर फादर एंड सन ये दोनों अपने अपने समय पर म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। तो अगर जो आपको जवाब मालूम है तो 5599 पर ज़रूर भेजिएगा। अभी तक किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। हमारा सवाल यही था कि अपने समय पर इनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर डेट थे, इन्होंने म्यूज़िक दिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं इनके बेटे ने आकर फिर म्यूज़िक दिया इस इंडस्ट्री में। तो द फादर वॉज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, और साथ में जो इनके बेटे हैं ये भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। ऐसे एक नहीं, दो तीन जोड़ियाँ हैं। अगर जो आपको जवाब मालूम है तो 5599 पर आपको मैसेज करना है, जबकि 7 मिनट रह गए हैं 3 बजने में, और देखेंगे कितने लोगों को जवाब मालूम है।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर अभी का साथ है जबकि 3:01 हो चुके हैं हमारे स्टूडियोज में. ऐसे में वी आर हाफ वे थ्रू द शो विच इज जस्ट चिल प्लेइंग ऑन बॉलीवुड्स फेवरेट स्टेशन हम. और अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और 104.2 FM साथ में रोवा पर ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा. जो सवाल हमने आपसे किया था कि बॉलीवुड में ऐसी जोड़ियाँ हैं जो कि फादर एंड सन की म्यूजिकल जोड़ियाँ थी जो अपने अपने समय में फादर भी अपने ईरा में काफ़ी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे और इसके साथ में अब फिर बाद में चलकर उनके बेटे भी म्यूजिक डायरेक्टर बने. तो ऐसे कुछ 3 जोड़ियां हैं जिनमें से एक जोड़ी का नाम हमारे पास में लोगों ने मैसेज किया है जिनमें शामिल है यास्मीन. यास्मीन ने लिखा है रोशन लाल नागरात और जिनके बेटे थे राजेश रोशन. इन्होंने चलकर आगे जूली जैसे फिल्मों में म्यूजिक दिया और इसके साथ में यही जवाब अनुराधा ने भी दिया है. रोशन लाल साथ में राजेश रोशन इनके बेटे थे और यही जवाब जैश्निल ने भी दिया है. लेकिन दो और ऐसे जोड़ियां हैं जिन्होंने आगे चलकर फादर एंड सन दोनों ने बॉलीवुड में म्यूज़िक दिया अपने अपने समय पर. तो अगर जो आपको जवाब मालूम है तो 5599 पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा और इसके बारे में डिस्कस और भी करेंगे हम कल के प्रोग्राम नाइट कैफ़े में जबकि हमारा और आपका साथ रहेगा. इस आवा की शुरुआत करते हैं सोनू निगम के साथ में. अगर जो आप आउट एंड अबाउट है शॉपिंग कर रहे हैं या फिर रास्ते में हैं शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं तो ऐसे में आपको ये गाना सुनवाते हैं और इसे आप बिल्कुल इंजॉय करिएगा.

हम पर फिल्म जानेमन से हमने इस गीत को आपको सुनवाया, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सोनू निगम ने अदा किया है। और जानेमन में अगर जो आप इस गाने को देखेंगे, चेकआउट करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सलमान खान सच में रोए, नाक लाल करके ही रोया है इस गाने में। और अक्षय कुमार ने कभी इंटरव्यू में भी कहा था कि इस गाने को फिल्माने के समय, पिक्चराइज करने के वक्त उनको लग रहा था कि शायद ये सच में इमोट कर रहे हैं। तो अगर जो आपने ये फिल्म नहीं देखी या फिर इस गाने को नहीं चेकआउट किया, अजनबी शहर इसे ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर। और जो सवाल हमारा था, जो म्यूज़िकल कंपोजर्स थे, म्यूज़िकल डायरेक्टर्स थे, जहां पर अपने समय में फादर ने भी, पिता ने भी म्यूज़िक दिया और उस बाद में चलकर उनके बेटे ने भी और आगे चलकर इसी इंडस्ट्री में म्यूज़िक दिया, तो किसी ने मैसेज किया है उदित नारायण और साथ में आदित्य नारायण, तो ये दोनों तो गाना गाते हैं, फादर एंड सन है, जोड़ी है, लेकिन गाना गाते हैं, प्लेबैक सिंगर्स थे। लेकिन जो म्यूज़िकल डायरेक्टर्स हैं, इनकी जोड़ी की बात कर रहे थे, जहां पर अपने ईरा में फादर ने भी दिया है म्यूज़िक और एज दे से लाइक फादर लाइक सन, बाद में चलकर बेटे ने भी म्यूज़िक दिया। तो एक और एक जवाब आया है, जहां पर आपने लिखा है, अपना नाम तो नहीं लिखा है, 6060 वो आपने जवाब दिया है, एस डी बर्मन साथ में आर डी बर्मन, जी हाँ, पंचम जिसे कहते थे, और साथ में आरडी बर्मन, ये फादर एंड सन की जोड़ी थी, सचिन देव बर्मन और आरडी यानी राहुल देव बर्मन, काफ़ी टैलेंटेड जोड़ी, ये फादर की भी और साथ में सन की थी, और काफ़ी हिट म्यूज़िक को इन्होंने दिया है। एक और एक पेया है जो कहीं ना कहीं छूट रहा है म्यूज़िकल कंपोजर्स की। अगर जो आपको जवाब मालूम है तो 5599 पर मैसेज करना हमारे पास में। अगला इस गीत को सुनवाएंगे और उसके बाद में विनोद राठौड़ को भी शामिल करेंगे। इट्स 11 मिनट्स आफ्टर 3, 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा।

हम पर 3:20 हो रहे हैं और जो बातें हम कर रहे थे म्यूजिकल जोड़ी की, जहां पर एक पेयर यानी कि एक फादर और सन का नाम मिस हो रहा था कहीं ना कहीं, उसे तनवीर ने पूरा कर दिया है। जी हां, सरदार मलिक और अनु मलिक, ये फादर एंड सन की जोड़ी है, जहां पर सरदार मलिक ने अपने समय पर म्यूज़िक दिया है, उसके बाद में फिर आगे चल कर अनु मलिक ने भी जाकर म्यूज़िक दिया है। और अगर जो सरदार मलिक के कलेक्शन को देखें तो काफ़ी अच्छे अच्छे गाने को इन्होंने कंपोज़ किया है। तो पूरी की पूरी जो लिस्ट थी ये जाकर अब पूरी हो गई है, जबकि एस डी बर्मन और आर डी बर्मन की एक जोड़ी है फादर एंड सन की, इसके साथ में रोशन लाल और राजेश रोशन की एक अलग जोड़ी है फादर एंड सन की, और थर्ड पेयर जो है सरदार मलिक और अनु मलिक की। और इधर अगर जो फेसबुक पेज पर देखते, काफ़ी लोगों ने रिस्पोंड किया है, अपने अपने पेट्स के ब्यूटिफुल फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं हम के फेसबुक पेज पर, जहां पर पेपा साथ में पीच का फोटोग्राफ्स आया है, कमल ने अपलोड किया है, इसके साथ में निर्मल ने कुकी का एक बिल्कुल ब्यूटीफुल फ़ोटो अपलोड किया है। तो अगर जो आपने अभी तक अपने पेट्स के फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किए हैं तो यहां जाकर आप कर सकते हैं टू शो देम अ लिटिल बिट ऑफ अफेक्शन। और अगर जो आपके पास में पेट्स नहीं है और आप कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर जाकर इन फोटोग्राफ्स का आप देख सकते हैं और इन पर आप जो रिएक्शन है आप दे सकते हैं अपना खुद का। ये सभी कुछ जारी है हम पर, और थोड़ी देर में आपके लिए एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें आपका फीडबैक भी हमें चाहिएगा।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
9: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
10: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
12: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
13: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
14: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vogue 442-litre side-by-side fridge freezers, $699. Midea heat pump dryers, $499. Comfy 12-place dishwashers, $299. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
15: TradeDepot.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
17: हम पर रवि का साथ है और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करें। तो एक स्टफ ने रिपोर्ट किया है, स्टफ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि ओकलैंड के क्ले पीट ने अभी हाल ही में जाकर उन्होंने अपना घर लिया है। काफ़ी लोगों का ये एक सपना होता है कि ओकलैंड में अपना खुद का एक मकान हो, घर हो। तो ऐसे में ओकलैंडा क्ले पीट ने, जो कि कीवी है और अभी हाल ही में जाकर इन्होंने अपना जो पहला घर है ये लिया है, और ये है 55 ईयर्स के और आईटी फील्ड में ये काम करते हैं और सिंगल है, और इसी कारण से शायद इनको थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो रही थी। और इनके मुताबिक, इनके खुद के बयान के मुताबिक, इनका जो क्रेडिट रिकॉर्ड है ये कुछ इनके फेवर में भी नहीं था। तो इन्होंने बाद में फिर जाकर मॉर्गेज एडवाइज़र से बात की और कुछ गाइडेंस लिया, और जाकर इन्होंने अब जाकर 55 इयर्स के एज पर अपना जो पहला मकान है, घर है, जाकर ले लिया है। और काफ़ी प्राउड भी है अब अपने इस जर्नी को लेकर। हम काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, बाहर देशों से आते हैं, न्यूजीलैंड में आकर अपना घर बनाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर जो आप पहला ओ नया आकर अपना जो जेनी है, अपना प्रोसेस है, शेयर करना चाहते हैं, तो 0800-004-866 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में, इस जेनी के बारे में आप शेयर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के साथ में, ताकि और जितने लोग हैं अभी प्रोसेस में हैं या फिर रास्ते में हैं, जो पहला मकान या घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो सके। और इसके अलावा अगर जो आप टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो 5599 पर हमारे पास में आप मैसेज भी कर सकते हैं। और बता सकते हैं कि आपको अपना जो पहला घर है लेने में कितना साल लगा, कितने ईयर्स लगे आपको वो ड्रीम अचीव करने के लिए। और अगर जो आप एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, अपने जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो 0800004866 पर आप हमारे पास में कॉल भी कर सकते हैं। आपको मौका देंगे पूरा उन्हें अपनी जो कामयाबी है, सक्सेस है, इसका पीछे का जो जर्नी है, जो डिफ़िकल्टीज़ है जो आपने शायद फेस किया होगा और कैसे उसको ओवरकम किया, इसके बारे में आप हमारे साथ में ऑन 0800004866 बातें कर सकते हैं।

हम पर दो दोस्तों की कहानी गाने में आप सुन रहे थे, तू मेरा भाई नहीं है। और कारवा को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक और एक कम्युनिटी न्यूज़ है, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026। फिजी गिरमिट फाउंडेशन, न्यूजीलैंड एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशन के साथ में मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026। और ये रहेगा, आप डेट्स मार्क कर लीजिए, कमिंग संडे को 26 जुलाई को आपको सिर्फ जाना होगा A1 इवेंट सेंटर, 731 ग्रेट साउथ रोड, पापटोए, सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक। यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी सर्विसेज अवेलेबल की जाएंगी। अक्सर हम लोग अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी निगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग रहेगी, आपके ब्लड प्रेशर, साथ में डायबिटीज़ और ECG के लिए आई टेस्ट, ये सभी कुछ किया जाएगा बारी बारी से। और इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, CPR कैसे किसी को दे सकते हैं। इसके साथ में कुछ इजी योगा पोस्चर्स भी आपको बताया जाएगा, और मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी बात की जाएगी। और अगर जो आपके पास में कोई ऐसे मोड़ पर है जहां पर करियर को लेकर कोई डिसीशन अभी आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यहां पर ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो आपके लिए आपके करियर के बारे में आपसे बातें करेंगे। ये सभी कुछ आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा ऑन संडे 26th of July एट 731 ग्रेट साउथ रोड, पापटोए, सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक। फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड साथ में एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस आपके लिए ये सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। मार्क द डेट और आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी जगहों पर फ्री स्क्रीनिंग नहीं ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो इससे पूरा का पूरा आपको फ़ायदा उठाना है।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: It's easy to see signage as a cost. The smart businesses see it as leverage. A clean, professional sign can bring in new customers every single day. If one extra job covers the investment, everything after that is upside. Speedy Signs design signage that builds credibility and drives action without ongoing fees. Ready for signage that pulls its weight? Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
4: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
7: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
6: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
7: Available at selected branches. T's and C's apply.
8: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
9: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi. Mast malang jo.
10: हम पर रवि के साथ है और आपके साथ में शेयर कर ले, अगर जो अभी तक आपने अनफिल्टर्ड का पॉडकास्ट नहीं सुना है तो ब्रेकिंग बैरियर्स, यहाँ पर सैंडी और रुजबे ने बातें की हैं शनील लाल के साथ में, जिन्होंने बहुत ओपनली LGBTQ के बारे में बात किया, उनके राइट्स के बारे में बात किया और कैसे उनको टारगेट किया जाता है इसके बारे में भी बातें की हैं, और साथ ही साथ में कैसे इन सभी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम किया जा सकता है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी लाइट थ्रो किया है। तो अगर जो आप सुनना चाहते हैं और को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत है तो इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर सुने। ड्राइव लिखे 5599 पर भेजें और यहां से आपको पूरा का पूरा ऑडियो मिल जाएगा। इसके साथ में अगर जो ब्रेकफास्ट कैचअप आप मिस कर देते हैं तो आपके पास में मौका है, जैसे ही आप BF लिखकर 5599 पर भेजते हैं आपको मिल जाएगा विजय एंड पूजा का जो कैचअप है ब्रेकफास्ट का। ये यहाँ पर विजय एंड पूजा भी काफ़ी रिसर्च करके और हार्ड हीटिंग टॉपिक्स को लेकर आते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ में ब्रेकफास्ट शो में। ये सभी कुछ आपके पास में मौका है। और इसके साथ में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो यूजुअली वीकेंड्स पर मैं कहूँगा, क्योंकि संडे इवनिंग तक आप वाइंड डाउन करना चाहते हैं तो आपके पास में मौका है हम म्यूज़िक स्टेशन, जहाँ पर हम रिवाइंड पर आपके लिए 60s और 70s के गोल्डन हिट्स लेकर आते हैं। फिर उसके अलावा हम 80s का जुक बॉक्स है, जहाँ पर आप 80s के ईरे के गाना सुन सकते हैं। साथ में फिजी भजन्स का भी एक प्लेटफॉर्म आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चर्दी कला है, जहाँ पर पंजाबी हिट्स को भी आपके लिए स्टोर किया गया है। साथ ही साथ में फिजी कीर्तन संग्रह सुनने का पूरा मौका है आपके पास में, और अलोंग विद राहत फतेह अली खान, जिनकी आवाज में आप सूफी या कवालियां सुनना पसंद करते हैं, ये सभी कुछ ऑप्शंस आपके लिए हम म्यूजिक स्टेशंस पर है, जिसका आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

0: to Avineet.
1: हम पर 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं. जबकि जस्ट आफ्टर 4 ऐसे में हमारा और आपका साथ 6 तक रहेगा. बस साथ देते रहिएगा एंड कीप हमिंग.

हम पर कम्युनिटी न्यूज में एक और एक एंटरटेनिंग अनाउंसमेंट है आपके लिए, जबकि न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनविटेशन दे रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, जो कि रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। अगर जो आप एक खिलाड़ी है और कैरम खेलना पसंद करते हैं, या फिर बहुत दिनों से आपने इस गेम को नहीं खेला है, तो इट्स टाइम टू टेक आउट योर बोर्ड, प्रैक्टिस वापस चालू कीजिए, क्योंकि 22nd और 23rd अगस्त को ये कंपटीशन रहेगा, जहां पर आप किसी भी स्किल लेवल के हो, आपको एनकरेज किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर, या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को आप कॉल करें 02109085067 पर, 02109085067 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं।

0: First 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
2: Hum.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम पर मैं अभी अक्सर आपके साथ में कुछ ऐसे ऐसे कोट्स शेयर करता रहता हूँ ताकि आप अगर जो लाइफ में थोड़े परेशान हैं आपको कहीं ना कहीं से एक प्रोत्साहन मोटिवेशन मिल सके. तो लाइफ में कभी कभी कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने से पहले, कुछ अच्छा परिणाम मिलने से पहले एक दौर ऐसा आता है जहाँ पर कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं. तो इस दौर में आप धैर्य रखिएगा, धीरज रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ऐसे दौर में ये सोचिएगा कि जब भी किसी भी तीर को कमान से चलाना होता है, जितना पीछे आप जो तीर है उसको खींचते हैं, उतनी ही तेज़ी से वो और दूर जाकर अपने लक्ष्य को छूता है. तो जब लाइफ आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रही हो, तो यही सोचिएगा कि इसके बाद में उतनी ही तेज़ी से आप आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को छुएंगे.

आपके साथ हम पर कुछ कम्युनिटी न्यूज़ भी शेयर करते हैं ताकि आप किसी बात से चूके नहीं और कोई इवेंट जो आपके आसपास हो रहा है इस पर आप बिल्कुल अपडेटेड और अवेयर रहे। तो आपको बता दें कि फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026। यहाँ पर जो एंट्री है बिल्कुल फ्री है। याद रहे हेल्थ एंड वेलबींग को लेकर है, अक्सर लोग अपने हेल्थ को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपके पास में अच्छा मौका है। जबकि संडे 26 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट वीक संडे को A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साथ रोड पापटोई में सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक यहां पर आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग रहेगी, जहां पर आपके ब्लड प्रेशर साथ में डायबिटीज़ और किडनी और ECG और आई टेस्ट ये सभी कुछ किया जाएगा और ये फ्री स्क्रीनिंग है। इसके साथ में आपके लिए प्रैक्टिकल लर्निंग रहेगी CPR को लेकर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा भी आपको ईजी पोस्चर सिखाया जाएगा, साथ में मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर भी बातें होंगी। अगर जो आपको करियर को लेकर अपने कुछ एडवाइस चाहिए तो यहाँ पर एजुकेशन यानी कि एजुकेट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे इसको लेकर भी। तो ये सभी कुछ आपको याद रहे संडे 26 जुलाई आपको सिर्फ जाना है A1 इवेंट सेंटर सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Ladies and gentlemen.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं. और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw. Emotions होते हैं real. और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ. अच्छा,
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन.

0: RNZ.
1: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
2: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
3: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Put your head to Gandhi.
6: हम पर रवि का साथ है और जबकि कल सुबह सुबह वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा, ऐसे में वर्ल्ड कप का फीवा पूरे पैमाने पर है, तो हमने सोचा चलो इसी मौके पर आपको बता दे कि कैसे और कब और कहां पर पेनल्टी शूटआउट्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अकॉर्डिंग टू फीफा म्यूजियम वेबसाइट, जो शूटआउट्स थे ये पहले नहीं हुआ करती थी, और जब भी दोनों टीमों के बीच में मैच ड्रॉ से एंड होता था तो वहां पर कोई रिप्ले वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि इट वाज वेरी कॉस्टली उन दिनों कि रिप्ले फिर से खिलाया जाए, तो मैच यूज टू एंड और कंक्लूड एज अ ड्रॉ। और इसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक बार ये किया गया कि जब टीमें निलोल या फिर किसी भी स्कोर लाइन से ड्रॉ रिजल्ट होती थी इनके बीच में, तो एक प्रपोजल दिया गया कि इनके बीच में जो विनर है डिसाइड किया जाएगा बाय ड्रॉइंग देयर नेम्स आउट ऑफ अ हैट। तो ये हुआ 1968 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान, जहां पर इसराइल को एलिमिनेट किया गया, जबकि उनके और बल्गेरिया के बीच में जो मैच है ये 1-1 से बराबर ठहरा। उसके बाद में किसी ने ये सुझाव दिया कि इनका जो विनर है डिसाइड किया जाएगा बाय ड्रॉइंग देयर नेम्स आउट ऑफ अ हैट, और बल्गेरिया का नाम निकला और उसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ विनर। और इसराइल ने इस बात को लेकर काफ़ी परेशानी हुई और काफ़ी दुखी भी हुए, और ये एज अ लूजर वहाँ से चले गए। और उसके बाद में 1969 में फीफा को एक प्रपोजल मिला बाय माइकल एल्मोग, जिन्होंने बताया कि अगर जो मैचेस ड्रॉ हो जाती है तो विनर को बाय पेनल्टी शूटआउट्स डिसाइड किया जा सकता है। तो माइकल एल्मोग वॉज बिहाइंड दिस प्रपोजल, और बाद में चलकर माइकल एल्मोग इसराइल फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे 1973 से लेकर 1982 तक। है ना इंटरेस्टिंग न्यूज़।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और अब की बार आपको बताने जा रहे हैं जहां पर आपके पास में मौका रहेगा गरबा खेलने के लिए। जी हां, राज गढ़वी लेकर आ रहे हैं आपके लिए गरबा नाइट, जिन्हें वेरी प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, साथ में विनय मेहता और प्रांशी ग्रुप। तो इनके साथ में गरबा खेलने का मौका आपको दिया जाएगा इन ओकलैंड, जबकि गरबा विद राज गढ़वी ये रहेगा लाइव इन ओकलैंड एट दी महात्मा गांधी सेंटर, सैटरडे 1 अगस्त को ये रहेगा। तो अभी से ही आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। शायद अभी तक आपने किसी भी गरबा नाइट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपके पास में ये बेहतरीन मौका है, आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिए टिकट्स आप ले सकते हैं Events Tickets New Zealand, that's eventstickets.co.nz, यहाँ पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हैं। और जानकारी के लिए आप स्वप्निल को कॉल करें 0224394736 पर।

0: listening to Avineet.
1: This is the final hour of the show. जबकि इस just after five में हूँ अभी आपके साथ में छह तक ये कारवा चलता रहेगा और इसी तरह से इस आवा में भी आपका खास स्वागत करते हैं और अगर जो अभी ही आपने ट्यून इन किया है थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन और यहाँ से लेकर छः तक जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स है ये भी आपके साथ में रहेगा जो मैजिक नंबर्स है 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं तो आपको बता दें 5599 आप इस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि हम पर वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ऐसे में आपके फेवरेट बॉलीवुड डायल पर आपके साथ में अब की बार शेयर करने जा रहे हैं बॉलीवुड से कुछ हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़। जबकि आने वाली फोर्थ कमिंग मूवी बंटवारा 1947 है, जहां पर सनी देओल को डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी ने, तो इस मूवी का जो सेकेंड टीजा है इसे रिलीज़ किया गया है। जबकि इस मूवी को प्रोड्यूस किया है आमिर खान प्रोडक्शंस ने, और इस टीजा में आप सनी देओल को देख सकेंगे और अपने डायलॉग्स के साथ में कुछ एक्शन करते हुए भी। हालांकि कुछ खास प्लॉट पॉइंट्स को नहीं रिवील किया गया है, लेकिन एज द नेम सजेस्ट बंटवारा 1947 ये पार्टीशन के बारे में बात हो रही है, तो ऐसे में इसी को लेकर शायद ये फिल्म बनी है। और आने वाले दिनों में शायद एक फुल फ्लेज्ड ट्रेलर भी रिलीज किया जाए, इसे भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. TNCs apply.
1: डिब्बा खुल गया।
2: भरत भाई, टिफिन खुल गया छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
2: डिब्बा खुल गया।
3: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
4: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
5: हम्पर विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आवर स्पॉन्सर्स आपके लिए लेकर आते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल अपडेट्स। और जबकि कल सुबह फीफा वर्ल्ड कप का ग्रैंड फाइनल होने के हुए 7 बजे सुबह तो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में एक ज़बरदस्त खेल रहेगा, एक मैच रहेगा, इसको भी लुक फॉरवर्ड किया जा रहा है। और अर्जेंटीना शायद पूरी की पूरी कोशिश करेगी, दे हैव हैड अ गुड रन, लेकिन इधर स्पेन भी किसी से कम नहीं। तो जो फाइनल रिजल्ट है कल हमको करीब 9:30 के आसपास पता ही लग जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर टीम्स, अगर जो आप स्पेन को चीयर कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, या फिर आप एक अर्जेंटीनियन फैन हैं आपके लिए भी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। द ग्रैंड फाइनल हैपनिंग टुमारो एट 7 AM। और हाँ, याद रहे कि जो क्लोजिंग सेरेमनी इसके बाद में रहेगी और जो हाफ टाइम का शो है इसे भी आप मिस मत कीजिएगा।

104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। मैं हूं अवि, आपका साथ दे रहा हूं और आप हमें बहुत सारा प्यार देते हैं लिसनरशिप के द्वारा, जितना भी आप हमें सुनते हैं। और उसके कारण न्यूजीलैंड में नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन का जो किताब है हमें मिला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे थोड़ा और मांगते हैं, आप जितना प्यार हमें देते हैं इसी तरह से आप हमारे जो फेसबुक पेज है इसको भी फॉलो कीजिएगा। हम 104.2 FM का जो फेसबुक पेज है, अगर जो किसी कारण से अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जाकर जल्दी से आप फॉलो कीजिए इस पेज को, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हमारे जो शो होस्ट होते हैं, आरजेज होते हैं, अपने अपने शो में कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर पोस्ट अपलोड करते रहते हैं। और इसके अलावा ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पर रन किया जाता है। तो इसके लिए, इसीलिए आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
5: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.

104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा। बस थोड़ी देर तक और हम आपका साथ देंगे और ये कारवा चलता रहेगा 6 तक। मैं हूँ अभी आपके साथ में।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। आपने 12 बजे से हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात कल रात को नाइट कैफे में होगी। और इसके साथ कल से यूनिवर्सिटीज़ और साथ में स्कूल्स वापस खुल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। कल सुबह सुबह ट्रैफिक कुछ ज़्यादा रहेगी, तो आपको शायद जितने समय का आप अलार्म लगाते थे उससे थोड़े पहले का अलार्म लगाना पड़ेगा कल का। लेकिन जो भी हो, ऑल द बेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स वापस स्कूल जा रहे हैं। साथ में आप भी एक नया वीक शुरुआत करने वाले हैं, वापस नौकरी पर जा रहे हैं वीकेंड सेलिब्रेट करने के बाद में, तो लेट टुमारो बी अनदर प्लेजेंट डे। इसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं एंड हैव अ गुड वीक अहेड। आपसे और बातें होंगी कल रात को, उसको भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। इन द मीन टाइम डू टेक केयर। दिस इज मी अवि साइनिंग ऑफ। बाय।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

हेलो, आज है रविवार 19th ऑफ जुलाई और जबकि 6 बजने को आए हैं, तो आइए सफ़र हम शुरू करते हैं दिल से का संडे नाइट मेलोडीज़ में। मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो चुका हूं। रात 12 तक हम यूं ही आपके हम सफ़र यहां पर बने रहेंगे और सप्ताह ख़त्म होने का आया है, कल से दूसरा सप्ताह शुरू होगा, तो इसकी तैयारी हम करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इसका भाई फिनाले कल सुबह 7 पर होने का है, तो क्या जितनी भी टीम्स इस साल फीफा वर्ल्ड कप में आई थी इनमें से क्या आपकी टीम ने हैव दे मेड द कट टू द फाइनल टू। कल सुबह 7 पर बहुत ही ज़बरदस्त खेल शुरू हो जाएगा बिटवीन स्पेन एंड द डिफेंडिंग चैम्पियंस अर्जेंटीना, तो इसकी कुछ तैयारी करेंगे। कुछ स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी टीम फेवरेट्स है गोइंग इनटू द फाइनल ऑफ फीफा 2026 वर्ल्ड कप। इसके अलावा जो खेल हुए हैं बीते सप्ताह इसके बारे में बातें करेंगे, आपको तैयार करेंगे। वी लुक एट द वेदर इन स्टोर फॉर अस फॉर नेक्स्ट वीक और फिर इधर उधर की बातें करते हुए आज की शाम बहुत ही रंगीन और बहुत ही आरामदायक आपके लिए हम बनाने वाले हैं। मैं हूं जिकाश और अभी जब मैं प्रेप कर रहा था अबाउट फॉर द प्रोग्राम, तो एक बहुत ही प्यारी सी कहावत, बहुत ही प्यारी सी लेख मेरे सामने आई है, ये आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ एज एन इंस्पिरेशन। किसी ने लिखा है कि आपका जीवन आपके ही बनाए गए विकल्पों का परिणाम है। योर लाइफ इज़ अ रिजल्ट ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव मेड सो फार। अगर आपको आपका जीवन पसंद नहीं है तो समझ लीजिए कि यही उपयुक्त समय है कि आप अपने जीवन में बेहतर विकल्प चुनें। मतलब कि इफ़ यू डोंट लाइक वेयर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ, देन इट्स टाइम टू स्टार्ट मेकिंग बेटर चॉइसेस। तो इसी के साथ में आइए शुरू करते हैं संडे नाइट मेलोडीज फॉर द 19th ऑफ जुलाई 2026। आप सभी तक मेरा नमस्कार पहुँचे। क्योरा

0: कार्यक्रम में और भी आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कम्युनिटी। तो कैरम खेलवानू, जूस पीवानू, मजानी लाइफ, MBBS, मुन्ना भाई MBBS में इस डायलॉग को आपने सुना था। वेल, अगर आप एक कैरम प्लेयर है तो द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है इन द कम्युनिटी टू द 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट। ये होने वाला है 22 और 23, 22nd एंड 23rd ऑफ अगस्त को एट बर्कनहेड स्काउट्स हॉल। प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप विजिट करें न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज को, या फिर आप कॉल कर सकते हैं NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को ऑन 021-090-85067 पर। इसके अलावा श्री राम मंदिर, इनके द्वारा अखंड रामायण पाठ की आयोजना की जा रही है 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में। ये होगा सैटरडे 1st से लेकर संडे 2nd अगस्त के बीच में। शनिवार 1 तारीख अगस्त को सुबह 7 बजे रोट पूजा होगी, इसके बाद आरती एंड 8:45 AM के आसपास रामायण पाठ शुरू होगा। एंड देन फॉलोइंग डे संडे को 2nd अगस्त को 10 बजे रामायण पाठ खत्म होगा, फॉलोड बाय हवन एंड आरती। महाप्रसाद विल बी सर्व्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर आप अपनी मंडली को लेकर जाना चाहते हैं टू परफॉर्म रामायण, यू कैन कॉल टू रजिस्टर ऑन 09-836-4647, दैट इज 09-836-4647 पर। अगले सप्ताह रविवार को हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026 होने वाला है फिजी गिरमिट फाउंडेशन NZ इन एसोसिएशन विथ एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशन द्वारा ये एक्सपो लाया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में सभी के लिए। I1 इवेंट सेंटर पर ये एक्सपो होने वाला है 731 ग्रेट साउथ रोड फापाटोटो में सुबह 10 से लेकर 3 बजे के बीच में। फ्री स्क्रीनिंग फॉर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी ECG एंड आई टेस्ट। इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा ऑन कैंसर स्क्रीनिंग। प्रैक्टिकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होगा फॉर CPR, EpiPen, कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और इजी योगा में भी आप भाग ले सकते हैं। मेंटल एंड हेल्थ वेलबींग, फ्री फन फॉर द होल फैमिली, जहां पर फेस पेंटिंग, किड्स एक्टिविटीज, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, हैम्पर्स एंड गिवअवेज, योगा क्लासेस, जुम्बा और लाइव परफॉर्मेंसेस के साथ में ये हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ऑन द 26th ऑफ जुलाई A1 इवेंट सेंटर पापाटोटो में सुबह 10 से 3 बजे के बीच में। इसके अलावा बृहद राम लीला, ये होगा 8th ऑफ अगस्त इसी साल। इसके बारे में जानकारी हम आपको डिटेल में थोड़ी देर में प्रदान करेंगे।
1: Mixing in the house.

सनन एंड मेलोडीज में दोबारा आपका हम स्वागत कर रहे हैं। कई सारे इवेंट्स हमारे आसपास हो रहे हैं। कल बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा है दी विक्टोरिया इवेंट सेंटर, जहां पर कृष्णा अभिषेक को और राजीव ठाकुर को परफॉर्म करते हुए कई लोगों ने देखा। ऐसे ही राहत फतेह अली खान भी आने वाले हैं, करण औजला भी आने वाले हैं, राजीव गढ़वी भी आने वाले हैं टू डांस टू डू गरबा विथ यू। तो इसके बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वैसे आज आपको हम डबल टिकट्स डबल एंट्रीज देना चाहते हैं फॉर करण औजला शो। इनका पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर अगस्त

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: करण औजला एक ऐसा नाम जो लोगों की धड़कनें बढ़ा देता है, जो लोगों को एकदम से मेलोडियस मूड में लेकर चला जाता है। तो करण औजला आ रहे हैं विथ हिज पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर टू ऑकलैंड ऑन द 25th of August स्पार्क अरिना में ये कॉन्सर्ट होने वाला है एंड यू हैव टू बी देयर। मार्क माय वर्ड्स, इसके टिकट्स 25th of August से आने से पहले बहुत पहले ही सोल्ड आउट होने वाले हैं। तो अगर आपको टिकट चाहिए livenation.co.nz पर जाएं, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन इस घंटे पर इन द फर्स्ट आवर ऑफ संडे नाइट मेलोडीज अभी लगभग 24 मिनट हो चुके हैं, 28 मिनट्स हो चुके हैं। और नेक्स्ट हाफ एन आवर में बिफोर दिस आवर एंड्स बिटवीन नाउ एंड 7 PM हम एक करण औजला सॉन्ग आपके लिए प्ले करने वाले हैं। एज सून एज यू हियर इट आपको हमें मैसेज करना है। मैसेज क्या करना है, आपको लिखना है K I स्पेस सॉन्ग का नाम एंड सेंड इट टू 5599 फॉर योर चांस टू विन अ डबल पास। तो गौर से सुनते रहिए हमें। अभी से लेकर 7 बजे के बीच में करण औजला का कोई भी एक गीत हम प्ले करेंगे। जैसे ही आप गीत को सुने आपको हमारे पास मैसेज करना है, कह आई स्पेस सॉन्ग का नाम, गीत का नाम और अपने नाम के साथ आप भेजिए मैसेज ऑन 5599। दैट्स ऑल यू हैव टू डू।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: There's truckloads of savings with every single item in store nationwide. Half price at Briscoe's Half Price Sale. So honk for half price off the entire store. Hurry, ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
7: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
8: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
9: Hey, hello, bhai, hello, hello.
8: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
1: ધ બીટ ઓફ બોલિવૂડ.
10: વર્લ્ડ્સ બેસ્ટ અમારી કોઈ બ્રાન્ચ નહીં
1: હે. દિલ સે
11: सन एंड मेलोडी, इसका कार्यक्रम जारी है. मैं हुजकाश एंड लगे हाथ आपको हम याद दिला दे अबाउट रामलीला. किवी फर्न इमिग्रेशन एडवाइजर्स एंड एजुकेशन कंसल्टेंट्स इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट, मीडिया पार्टनर्स हम 104.2 FM, ये साथ में कोलैबोरेट करते हुए आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला, अ टाइमलेस स्टोरी एंड इटर्नल सेलिब्रेशन. 8th of August को ये बृहद रामलीला होने वाला है एट वैदिक सेंटर. पता तो आपको मालूम है, 32 ग्लासगो एवेन्यू, पापाटोएटोए में. एंड इसके लिए तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है. टिकट्स है सिर्फ $10 पर पर्सन. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन गेट इन फॉर फ्री. स्टॉल्स अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल अराउंड 500 पीपल इन्होंने इसको अटेंड किया था, तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मार्केट योर बिजनेस, अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. स्टॉल्स अगर आपको चाहिए, प्लीज़ गेट इन टच विद मास्टर अशोक जी ऑन 0211-795-459. दैट इज 0211-795-459. प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में.

How good are you at garba? If you are good, well, good enough, तो आपको एक नाम है ये पता होना चाहिए, राज गर्वी, क्योंकि he has been here before and he is coming back. Saturday, the 1st of August, महात्मा गांधी सेंटर में गरबा का मेला लगने वाला है. गरबा विद राज गर्वी लाइव इन ऑकलैंड. लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप प्राउडली प्रेजेंट्स द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर. कैलेंडर्स आप मार्क कर ले, 1st of August, जहां पर आपको पहुंचना है महात्मा गांधी सेंटर में फॉर एन एपिक सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशंस. टिकट्स eventstickets.co.nz लिख ले आप, eventstickets.co.nz पर जाए एंड गरबा विद राज गर्वी ये इवेंट वहां पर आपको मिलेगा. Grab your tickets, क्योंकि this is definitely be going to is going to be a sold out show. ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, स्वप्निल शाह को आप कॉल कर सकते हैं on 022-439-4736 पर. That is 022-439-4736.

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम।

कुछ स्टेट्स आपके साथ में हम शेयर कर रहे थे अबाउट फीफा वर्ल्ड कप. तो लेट्स लुक एट द मोस्ट टाइम्स अ कंट्री हैज वन फीफा टाइटल. अपने नाम किस कंट्री ने सबसे ज्यादा बार किया है? ब्राजील सो फार हैज वन इट 5 times, फॉलोड बाय जर्मनी एंड इटली दैट हैव वन 4 titles ईच. राइट, सो ब्राजील है, उसके बाद जर्मनी और इटली आती है. एंड इफ वी लुक एट अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हैज ऑलरेडी वन द कप 3 times. So if they win it tomorrow, they will also go up to the second position. Yani ki the team that will be winning World Cup for the 4th time. Now that will take the stats up to Brazil 5, Germany 4, Italy 4 and Argentina 4. To kya aisa hota hai ya nahi? Spain on the other hand, they have only featured in a FIFA World Cup final once and they have won it. 2010 में पहली बार स्पेन क्वालिफाई हुई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स. दे प्लेड अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड दे वन, और दैट इज द ओनली टाइम दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स एंड दे वन इट. क्या ऐसा दोबारा ये कर दिखाते हैं? दे हैव क्वालिफाइड अगेंस्ट, दे हैव वन द सेमीफाइनल, दे हैव कम इन टू द फाइनल्स. इफ दे विन इट, वेल दैट विल बी द सेकेंड टाइम दैट स्पेन विल बी विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप. तो क्या होता है कल सुबह, आपको क्या लगता है? विल इट बी अर्जेंटीना या स्पेन? हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं अपना प्रेडिक्शंस.

0: biggest hits. Hum. You're listening to Chikash.
1: मेंस फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हम बातें करते हैं तो इट्स ओनली फिटिंग कि हम वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें. तो वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप द नेक्स्ट वन इज़ हैपनिंग इन ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर 24 जून से 25 जुलाई 2027 में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप ब्राज़ील में होने जा रहा है. वैसे अगले साल फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड फॉर द 10th टाइम. और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बातें करें, इन द वीमेंस डिवीजन विनर्स कप विनर्स लिस्ट में नाम आता है. द फर्स्ट वन वाज वन बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 1991. नॉर्वे ने 1995 में जीता था. 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है. 2003 एंड 2007 में जर्मनी ने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया है. जापान ने 2011 में जीता था. यूनाइटेड स्टेट्स ने 2015 एंड 2019 में भी यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है. एंड 2023 में स्पेन ने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता था, बीटिंग इंग्लैंड. तो ऑल इन ऑल यूनाइटेड स्टेट्स ने 4 बार वीमेंस वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है. द डिफेंडिंग चैम्पियंस आर स्पेन. एंड कल सुबह अगर स्पेन मेंस फीफा वर्ल्ड कप जीत जाता है तो एज ऑफ टुमारो स्पेन विल बी द फीफा वीमेंस एंड मेंस वर्ल्ड कप विनर्स. वुडन दैट बी ग्रेट.
2: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
2: ब्रांची ग्रुप थ्री इवेंट न्यूजीलैंड अने अरवाहा ऑटोज साथे मिलीने प्रस्तुत करे छे राजगढ़वी लाइव इन ऑकलैंड। तैयार थई जाओ एक यादगार सांज माटे, जहां हशे म्यूजिक, मस्ती अने नॉन स्टॉप गरबा। सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट द महात्मा गांधी सेंटर राजगढ़वी साथे मनाओ एक शानदार गरबा नाइट। गरबा विथ राजगढ़वी सैटरडे नाइट 1 ऑगस्ट। टिकट्स माटे जाओ events.tickets.co.nz।
3: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
4: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हाँ।

वर्ल्ड कप तो कल खत्म हो जाएगा, फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन रग्बी वर्ल्ड कप ये अगले साल है. एंड एज आई सेड, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप भी अगले साल है. लेकिन उससे पहले द नेक्स्ट बिग वन इज द कॉमनवेल्थ गेम्स. और कॉमनवेल्थ गेम्स में देयर आर 74 नेशंस एंड टेरिटरीज, वाइल देयर आर 56 मेंबर स्टेट्स इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. 74 टीम्स कॉम्पीट एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज बिकॉज सेवरल डिपेंडेंट टेरिटरीज एंड 4 होम नेशंस of the United Kingdom, that is England, Scotland, Wales and Northern Ireland, send separate teams. So, is par hum aur bhi baatein karenge. What is the Commonwealth and isme kaun kaun si countries hai? This is very interesting. Aapko ye piece of information kafi interesting lagega.

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। The beat of Bollywood.
2: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
3: Dil se, dil se, dil tak.
4: Hey, Bula, and welcome back to Sunday Night Melodies, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। जुलाई का महीना चल रहा है, 19 तारीख आज हो चुका है, तो यूं ही बस 11 दिनों में अब जुलाई का महीना भी ख़त्म हो जाएगा और फिर बचेंगे 5 months ओनली फॉर दिस ईयर टू कम टू एन एंड। एंड यस, जैसा कि सभी लोग कहते हैं, समय एकदम से भागता चला जा रहा है। भाई, समय के साथ आपको भी भागना सीखना चाहिए, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। एनीवेज, मंथ ऑफ जुलाई विल टेक अ क्विक लुक एट सम हिस्टोरिक न्यूजीलैंड इवेंट्स जो इस महीने में हुए थे। एंड ऑल्सो हमने कहा था कि कॉमनवेल्थ के बारे में हम बातें करेंगे। बहुत बार आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स भी आने वाले हैं, इस पर भी हम बातें करेंगे। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल 23 जुलाई से खेला जाएगा टिल द 2nd of August इन स्कॉटलैंड। तो हमारी अपनी कंट्री से कौन कौन से एथलीट गए हैं, इस पर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस। और कॉमनवेल्थ में 56 सोवरन स्टेट्स है, कंट्रीज है, वो कौन कौन सी है क्या आपको मालूम है? क्या आपकी कंट्री जहां से आप बिलोंग करते हैं, इज इट पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज? वेल, वील फाइंड आउट ऑन दिस आवर। तो जुड़े रहें, मैं हूं जिकाश, सनडे नाइट मेलोडीज में मैं आपका साथ देता चल रहा हूं। अभी आपने ट्यून इन किया है, स्वागत कर रहे हैं आपका। क्यों रहा?

ऑलराइट, कॉमनवेल्थ के बारे में हमने कहा था आपसे हम बातें करेंगे। तो कॉमनवेल्थ इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 56 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज। इट इज होम टू 2.7 बिलियन पीपल एंड इंक्लूड्स बोथ एडवांस्ड इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। 33 ऑफ आवर मेंबर्स आर स्मॉल स्टेट्स, मतलब कॉमनवेल्थ के मेंबर्स 33 आर स्मॉल स्टेट्स इंक्लूडिंग मेनी आइलैंड नेशंस। Commonwealth member governments have agreed to shared goals like development, democracy and peace. Commonwealth values and principles are expressed in the Commonwealth Charter. The Commonwealth's roots go back to the British Empire, but today any country can join the modern Commonwealth. The last two countries to join Commonwealth were Gabon and Togo in the year 2022. Now, if you go to the website thecommonwealth.org, यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन हमने पूछा था कि इज़ योर कंट्री अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। वेल, 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज मेकअप करता है कॉमनवेल्थ। देयर इज़ इन अफ्रीका, एशिया, द अमेरिकाज, यूरोप एंड द पैसिफिक। अफ्रीका से बोट्सवाना, कैमरून, गेबोन, गैम्बिया, घाना, केनिया, किंगडम ऑफ एस्वातिनी, लेसोथो, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, Togo, Uganda, United Republic of Tanzania and Zambia. This is in the Africa region. Asia se Bangladesh, Brunei Darussalam, India is part of Commonwealth, Malaysia, Maldives, Pakistan, Singapore and Sri Lanka. Now, I won't be going into much detail about Caribbean and Americas. Europe se hai Cyprus, Malta and United Kingdom. Pacific se Australia, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. So all these teams will be featuring in the Commonwealth Games that is gonna start on the 23rd of July. जिसके अपडेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। कॉमनवेल्थ के बारे में अगर आपको और जानना है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, जैसे कि द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, दिस सपोर्ट्स मेंबर कंट्रीज टू अचीव द कॉमनवेल्थ एम्स। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन सपोर्ट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, एंड द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग प्रोमोट्स ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ये सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है अंडर द वेबसाइट द कॉमनवेल्थ डॉट ओ आर जी, अबाउट अस या फिर अबाउट द कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। कैसे ये रन होता है, हु इज़ द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ? वेल, हिज मेजेस्टी किंग चार्ल्स द थर्ड इज़ द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ। इनका रोल है, द रोल इज एन इम्पोर्टेंट सिम्बोलिक वन, हैज़ नो मैक्सिमम फिक्स्ड टर्म, इज नॉट हेरिडिटरी एंड फ्यूचर हेड्स विल बी चोजन बाय कॉमनवेल्थ लीडर्स। तो दीज वर सम की डिटेल्स अबाउट द कॉमनवेल्थ।

0: जाते हो।
1: You're listening to Chikash.
2: For 2 weeks, आप सभी ने ट्रैफिक कंजेशन कम होने का मज़ा लिया है क्योंकि स्कूल्स बंद थे, तो जो 8 o'clock और 3 o'clock रश आवर ट्रैफिक फॉर स्कूल ड्रॉप अप्स एंड पिकअप्स, इससे नहीं जूझना पड़ता था। वेल, दैट हेडेक इज स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम टुमारो। कल से थर्ड टर्म ऑफ दिस स्कूल ईयर शुरू हो जाएगा। किड्स विल बी बैक एट स्कूल। तो आई होप इन छुट्टियों में आपने औसम टाइम बिताया है अपने किड्स के साथ में। आई डिड, we went for a great holiday in Fiji, and my kids, well, they don't want to get back to school tomorrow, but jana to padega kyunki hum bhi jate the. To are you ready? Aapne taiyari kar li hai? Agar last minutes check karne ho to some basic things ki unke backpacks are where they are supposed to, stationery topped up hai, their school uniforms if they do have uniforms टुमारो के लिए ये प्रेस्ड है और सही जगह पर रखे हुए हैं जहाँ से वो आराम से उठा सकते हैं। एंड अलार्म्स, योर अलार्म्स एंड योर किड्स अलार्म्स, दे आर सेट टू द राइट टाइम टू गेट देम अप अर्ली एंड फ्रेश सो दैट दे डोंट हैव टू रश टू स्कूल। तो छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कल सुबह आपको बहुत ही सहूलियत होगी। वैसे एक पेज है ऑन फेसबुक, देर इज़ Out and About Auckland, go and check it out, क्योंकि इसके बारे में बातें हम करेंगे आपसे थोड़ी देर में।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

भागदौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywoods.

104.2 FM और रोवर पर संडे नाइट मेलोडीज में दोबारा आपका हम स्वागत कर रहे हैं। मैं हूं जिकाश। इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाते हैं। 9 से 10 बजे के बीच में रविवार की रात्रि को हम गज़लों की एक दुनिया बसाते हैं और कुछ प्यारे प्यारे गज़ल आपके साथ में हम शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, शेर व शायरी करते हैं। और आज सबसे पहले जो गज़ल हम बजाने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम गुलाम अली सर। और गुलाम अली जी, इनकी पैदाइशी है 5 दिसंबर की 1940 में इनका जन्म हुआ था, तो 5 दिसंबर को इस साल ये 86 ईयर्स के हो जाएंगे। लिविंग लेजेंड हमारे साथ में हैं उस्ताद गुलाम अली। पाकिस्तानी गज़ल सिंगर है और पटियाला घराने से ये बिलोंग करते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग गज़ल सिंगर्स ऑफ हिज एरा हु हैज़ आल्सो बीन अ प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड। ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ बड़े गुलाम अली खान। तो उनके द्वारा गाया हुआ ये गज़ल आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं। और गज़ल हो, गज़ल से पहले शायरी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो नौशाद अहमद ने लिखा है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम गम ज़्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू है ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में यह बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुख्सत ली है, साफ लगता है आप जनाजे में नहीं आएंगे। आइए सुनते हैं उस्ताद गुलाम अली।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

गजलों की बारिश हो रही है एंड इस बारिश के बीच में आपको हम याद दिला दें कि द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ये दोबारा आ रहे हैं ऑकलैंड 25 जुलाई को, यानी कि अगले शनिवार को जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट एंड सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस की प्रस्तुति राहत फतेह अली खान, इनकी ओर से सोल स्टरिंग कवाली, टाइमलेस हिट्स और पावरफुल वॉइस को सुनते हुए यू विल बी कैप्टिवेटेड इफ़ यू आर इन द ऑडियंस ऑन द 25th of July। तो टिकट dryticketsdotcom पर बिक रहे हैं, जल्द से जाइए टिकट ले लीजिए क्योंकि ये टिकट्स अगले सप्ताह सोल्ड आउट हो जाने वाली हैं, मार्क माय वर्ड्स। और अगर आप देर कर देंगे तो भाई आप पछताने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही हसीन सी शाम होने वाली है एट द ट्रस्ट एरेना 25th of July की रात को, जब हम आपके साथ इंजॉय करने वाले हैं राहत फतेह अली खान को लाइव इन कॉन्सर्ट इन हिज अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। आइए सुनते हैं तलत अजीज की आवाज़।

गजल की इस महफिल को और भी आगे बढ़ाते हैं। एक दिल टूटे आशिक की फरियाद है और साहब जी लिखते हैं कि मत खिलाओ कसम उसे वो झूठी भी खा सकती है, मत खिलाओ कसम उसे वो झूठी भी खा सकती है, भूल कर मंजिल तुम्हारी बर्बादी के राह पर भी जा सकती है, मोहब्बत के अलावा थोड़े पैसे भी कमा लेना मेरे भाई, तुम्हारी रानी तुम्हें कभी भी छोड़ कर जा सकती है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज़ में दिस एवरग्रीन गज़ल।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।

जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर में शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? कभी आपको रियलाइजेशन हुआ है कि यार हमने इतना वक्त कितनी चीज़ों में बर्बाद किया है और इसके बदले कुछ अच्छा हम कर सकते थे? वेल, सोचिएगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ से आगे आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगे, जिसके ज़रिए आप अच्छी मेमोरीज बना सके और अपने और अपनों को खुश रखने में आप वक्त लगाए, ना कि उनको खुश करने में जो शायद आपकी ज़िंदगी में उतने मायने रखते ही नहीं हैं। तो भाई, इसी सोच के साथ में आइए शुरू करते हैं दी सेकंड टू लास्ट आवर ऑफ 19th of August, यानी कि दिस इज़ द सेकंड लास्ट आवर। नेक्स्ट आवर विल बी दी लास्ट आवर फॉर दी 19th of August, 19 July, मैंने पूरा महीना स्किप कर दिया। हाँ, तो 10 बजने का आए हैं, मैं हूँ जिकाश, आपका साथ दो और घंटे तक यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। इन दो घंटों में कुछ मेलोडियस सेमी गोल्ड क्लासिक्स आपके लिए हम पेश करेंगे, लाइक द नेक्स्ट वन इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक। स्वागत कर रहे हैं आपका। इस गीत के बाद में वील हैव अ लुक एट द वेदर एंड अ बिग शॉट आउट गोज टू एवरी वन हु हैव स्टार्टेड देयर नाइट शिफ्ट। सेफ्टी चेक्स आपने कर लिए हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर आपने ठीक तरह से पहने हैं, आपके आसपास कोई भी हैजार्ड नहीं है एंड यू आर सेफ टू एग्जीक्यूट वट एवर इज प्लान्ड आउट फॉर द नाइट। ऑलराइट, स्वागत कर रहे हैं आपका। मेक श्योर आप काम करते हुए सेफली फिनिश करें काम, और कल सुबह आपको एकदम से एक पीस में ही घर पर जाना है। दोज हु हैव नॉक्ड ऑफ, अगर आप रास्ते में हैं सावधानी बरतिएगा, डू नॉट रश, आराम से घर पर पहुँचे और फिर दोबारा आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। क्योरा

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: 19th of August and tomorrow will be the Why am I saying August? It is July. 19th of July hai aaj. Tomorrow will be the 20th of July. Again, reminder, 7 a.m. Kal Argentina or Spain will be battling it out for the FIFA 2026 World Cup. And alarm lagale, you have to watch that soccer match. वेदर के बारे में देखें तो आज तो ख़त्म होने के आया है. आज ओवरनाइट टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्रीज रहने वाला है. मंडे टुमारो कल दिन में टेम्परेचर 15 डिग्रीज, रात को 7 डिग्रीज ठंड पड़ने वाली है. मौसम की ओर देखें तो फाइन, लेकिन सुबह सुबह कुछ ज़्यादा बादल आपको देखने को मिलेंगे विथ लाइट विंड्स. दिन में 15 डिग्रीज, रात को 7 डिग्रीज. ऐसा ही वेदर ट्यूजडे, वेंसडे और थर्सडे को होने वाला है, यानी कि पार्टली क्लाउडी. शायद कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, अन्यथा मौसम ठीक ठाक ही रहने वाला है. एवरेज टेम्परेचर टिल फ्राइडे दिन में 15 डिग्रीज, एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक 6-7 डिग्रीज रात को पड़ने वाले हैं. 24 जुलाई फ्राइडे को बारिश होने वाली है. यार, वीकेंड की शुरुआत बारिश तो होती है तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मंडे से थर्सडे आपको अच्छा वेदर मिलेगा. फ्राइडे को कुछ बारिश हो सकती है एंड टेम्परेचर्स आर गोना स्टे अराउंड 15 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे. ओवरनाइट फ्राइडे को 9 डिग्रीज होने वाला है. तो दैट विल बी द वेदर फॉर द वीक. आप अकॉर्डिंगली अपने अरेंजमेंट्स कर ले. हाँ, स्कूल खुलने वाले हैं तो मेक श्योर बच्चों के लिए रेनकोट्स और अम्ब्रेलास दे आर एट एन ईजी रीच, ताकि ये बिना भीगे स्कूल तक जाए और स्कूल से वापस घर तक आए. फ्राइडे को बारिश होने की संभावना है.
0: You're listening to Chikash.

0: Hollywood's biggest hits.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
1: Kahani of Indelible Homes.
6: G'day, Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
7: Kogan Mobile. True Aussie value.
6: Terms and conditions apply.
8: Being fussy is just knowing what you want. So be more fussy.
9: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.

फेसबुक अकाउंट अगर आपके पास है तो गेट ऑन टू फेसबुक एंड गिव अस अ फॉलो हम 104.2 FM. अगर आप आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है वेल यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट क्योंकि बहुत काफ़ी ऐसी जानकारियां हैं जो हम ऑनलाइन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको आपके साथ में शेयर करते हैं. नाउ देयर इज़ अ पेज कॉल्ड आउट एंड अबाउट ऑकलैंड तमाकी मकोरो. चेक दैट आउट क्योंकि उस अकाउंट पर आपको तमाम इवेंट्स के बारे में पता लगने वाला है दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योक लोकल काउंसिल्स चाहे वो ऑकलैंड काउंसिल हो मनुकाओ लोकल बोर्ड हो इनके द्वारा क्या कुछ इवेंट्स आपके लिए लाए जा रहे हैं. दोज आर ऑल अपडेटेड ऑन आउट एंड अबाउट ऑकलैंड. गिव दैट पेज अ फॉलो और वहाँ पर जाकर आपको सभी एरियाज़ और इलाकों के बारे में पता चलेगा कि कौन

I was having a look at the international calendar under the United Nations organization, and July आज तो कुछ खास नहीं ऑब्जर्व किया गया है. कल 18 जुलाई था, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे को ऑब्जर्व किया गया है. टुमारो 20th ऑफ जुलाई इज वर्ल्ड चेस डे एंड इंटरनेशनल मून डे. तो क्यों इसको ऑब्जर्व किया जाता है, विल टेक अ क्विक लुक एट दैट इन द नेक्स्ट आवर. फिलहाल हम पर संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Oaklin, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.

इंटरनेशनल मून डे 20th of July नहीं, करवा चौथ नहीं है, इंटरनेशनल मून डे. द जनरल असेंबली डिक्लेयर इंटरनेशनल मून डे अ यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे टू बी ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 20th of July. इंटरनेशनल मून डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट लैंडिंग बाय ह्यूमंस ऑन द मून एज पार्ट ऑफ द अपोलो 11 लूना मिशन इन 1969. The celebrations will also consider the achievements of all states in the exploration of the moon and raise public awareness and sustainable moon exploration and utilization. तो पहली बार 20th of July को 1969 में अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून विथ ह्यूमंस ऑन बोर्ड. एंड आपको तो पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

Alright, it's time for me to get out of here. लेकिन जाने से पहले थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए. सनी नाइट मेलोडीज जितना हमने इंजॉय किया है, आप शायद करते हैं कि आपने भी उतना ही इंजॉय किया है. हमारी आपकी मुलाकात होगी अब अगले शनिवार को रेडियो पब में. तब तक के लिए आप अपना पूरा ख्याल रखें. मेक श्योर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने प्लान किया है, सेफली आप उसको एग्जीक्यूट करें. आई विश सक्सेस फॉर यू फॉर दिस कमिंग वीक एंड मिलेंगे with some more stories to tell, some more things to catch up on Radio Pub, 12 PM Saturday 25th of July. Tab tak ke liye aap apna khayal rakhe. I'm signing off. Have a great week ahead and a great night tonight. Kia ora, namaskar.

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
1: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
0: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
1: पर डेवलपमेंट के पैसे
0: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

की डोली में आई झील मिलाती जुगनू की बारा। सबके होठों पे ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
7: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
0: Playing Bollywood's biggest hits.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
3: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
2: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
4: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold. Night Flight.

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye? Wo khushbu aur wo asli masalo ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured up front. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: क्या? कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है। तो शब्दों की सुंदरता देखें।

0: Sunnyside Up.
1: सनी साइड अप में मैं आपके लिए एक यहाँ पे एक न्यूज़ लेकर आता हूँ जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और एक सस्टेनेबिलिटी के अराउंड काफ़ी ज़्यादा बातें होती है एंड एक न्यूज़ ऐसी हाथ लगी है जहाँ पे सोलर एनर्जी यूरोप में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि एक नया जॉ ड्रॉपिंग माइलस्टोन हिट किया है ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी इस इनिशिएटिव ने. तो नया डाटा है जो रिवील कर रहा है कि सोलर पावर वॉज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन फॉर द मंथ ऑफ जून. तो जो सोलर जनरेटेड पावर है दिस इज मोर देन मतलब इसने मोर पावर किया है सोलर पावर जनरेटेड पावर ने देन इवन कोल और न्यूक्लियर गैस और विंड. So yeah, it's good that people are now turning on to solar energy and solar energy को एक बहुत ही at least European recognition तो है ही. यूरोप में सोलर एनर्जी के ऊपर काफ़ी निर्भरता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक न्यूजीलैंड में भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही है टू गेट मोर सोलर पैनल्स ऑन. वेल क्या आपके घर पर अभी भी सोलर है, सोलर लगा है आपके घर पर अब तक, या आप अभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे ही निर्भर है? समथिंग फॉर अस ऑल्सो टू थिंक अबाउट दैट दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स. सोलर इज द फ्यूचर मे बी और मे बी नॉट, हू नोज.
0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: headlines.
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Good morning, 6:19 हुए हैं आज 20 जुलाई and today is the main important day क्योंकि आज होने वाला है इस एक महीने से हम जिस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे, इतनी ज़्यादा predictions कर रहे थे, आज finally decide होने वाला है who's going to be the winner for FIFA 2026. दो strong teams and one last final match. आज सुबह 7 बजे से ये शुरू हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी बिटवीन अर्जेंटीना द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड स्पेन. वेल लेट्स सी अर्जेंटीना मेसी का फाइनल वर्ल्ड कप फीफा एंड स्पेन लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. सो लेट्स सी क्या होने वाला है, कौन सी टीम आज अपने नाम करने वाली है ये टाइटल. लेकिन काफ़ी वर्ल्ड अराउंड बहुत एक्साइटमेंट रहा है अराउंड फीफा. कुछ गवर्नमेंट्स ने यू नो कुछ ऐसे रूल्स पास किए हैं फॉर फीफा जहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, केरला गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ केरला में उन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर किया है एक फॉर्मल हॉलीडे फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आज के दिन. और वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पता है बहुत लोग मिडनाइट तक जागने वाले हैं मैच देखने के लिए बिकॉज टाइम डिफरेंस के हिसाब से अभी वहाँ पे मिडनाइट हो जाएगा एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना वॉच द गेम ओवरनाइट और इसलिए वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू वर्क ड्यूरिंग द डे. क्या बढ़िया है यार ये. आज मुझे लग रहा है यहाँ पे काम पे भी काफ़ी लोग 9-10 बजे के बाद ही काम शुरू करेंगे बिकॉज एवरी वन इज गोइंग टू बी जस्ट ग्लूड टू देयर फोन्स. मैं देखता हूँ ना सिटी में रास्ते पे भी चलते चलते हर कोई फ़ोन में देखता रहता है 7 बजे के आसपास. मतलब जब मैं पहले सुबह सुबह काम पे जाता था और रेडियो पे नहीं होता था तो मैं देखता था काफ़ी लोग अपने फ़ोन पे रहते थे एंड मैचेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे. How close are you with FIFA and are you going to follow FIFA today? At least this is the last day. आज तो हम follow करना बनता भी है क्योंकि अब हमें पता है कि जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप जीतेगा. So it's going to be a massive event today और इसकी अपडेट्स भी आपके लिए हम यहाँ पे लाते रहेंगे. बट आप सुन रहे हैं हम गुड मॉर्निंग. सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी हिमेश रेशमिया टाइप से आज बट या इट्स द वेदर और इट्स मे बी मी. पता नहीं मेरा इम्यूनिटी वाट लग गया यार. दिस टाइम आई एम फॉलिंग सिक एवरी 8 वीक्स. क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ये इस सीजन में मैंने पर्टिकुलरली ये नोट किया है कि लोग बार बार बीमार पड़ रहे. इट्स लाइक हमने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है बीमारी का, हर 2 महीने में आ रही है हमारे पास. क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या मैं अकेला ही हूँ जिसकी इम्यूनिटी की वाट लग गई है?

नकाशा अजीज की आवाज आप सुन रहे थे। ये बहुत ही बढ़िया गाना शाहिद कपूर के ऊपर फीचर्ड गोल्ड तांबा। वेल, फुटबॉल की बात कर दी है, अभी फुटबॉल का मैच शुरू भी होने वाला है 7 बजे के बाद, लेकिन यार क्रिकेट को हम कैसे भूल सकते हैं। क्रिकेट इज समथिंग दैट यू नो आई हैव टू गिव यू एन अपडेट। सो बेसिकली इंडिया और इंग्लैंड का अभी सीरीज चल रहा था इंग्लैंड में, एंड वहाँ पे फाइनल ओडीआई था। काफ़ी स्पेकुलेशंस थे कि रोहित शर्मा का शायद से ये लास्ट वनडे हो सकता है। अब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अपडेट आया है। देखो मैच में नहीं देख पाया हूँ, आई विल बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि रात 10 बजे मैच शुरू होने वाला था एंड आई हैव टू कम हियर अर्ली मॉर्निंग, सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू इवन लुक लाइक यू नो स्टार्ट द मैच एज वेल, क्योंकि एक बार शुरू करता तो शायद फिर यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता। बट एनीवे, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हिट हुए इस मैच में। थर्ड ओडीआई चला इंग्लैंड में, जहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच का ये मैच रहा। इंडिया की में हार हो गई 27 रन से, इंग्लैंड जीता, लेकिन रिकॉर्ड्स काफ़ी होल्ड हुए मैच में। जैसे कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जहाँ पे इन दोनों ने एक साथ 400 मैचेस खेले एक साथ। सो दैट इज़ वन रिकॉर्ड। ये इन्होंने सचिन और द्रविड़ के रिकॉर्ड को पास किया। इसके साथ साथ एनी बैटर टू स्कोर इंटरनेशनल रन्स में

0: माई
1: ब्रेकफास्ट शो जारी है आपके लिए और बॉलीवुड की न्यूज़ भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करनी होती है। तो न्यूज़ अब ऐसी है कि शायद अर्जुन कपूर इज़ बैक इन द न्यूज़। अर्जुन कपूर शायद डेट कर रहे हैं एक आपने इनको देखा होगा काफ़ी बार, ये कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, एक्ट्रेस भी है, साहिबा बाली। तो अर्जुन कपूर और साहिबा बाली शायद डेट कर रहे हैं क्योंकि इनको साथ में पाया गया लंदन के आइकॉनिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। अभी जब इंडिया और इंग्लैंड का थर्ड ओडीआई चल रहा था कल ही 19 जुलाई को, सो अर्जुन कपूर साहिबा बाली वाज स्पॉटेड दैट टुगेदर। एंड बातें ऐसी हो रही है कि शायद दोनों हैं टुगेदर क्योंकि दोनों थे ड्रेस्ड इन शेड्स ऑफ ब्लू। अच्छा, तो ऐसा होता है मतलब अगर आप साथ में हो डेट करो तो आपको मैचिंग कपड़े पहनने होते हैं, शायद ये है। और इसके साथ साथ वहाँ पे काफ़ी लोग और भी दिखे थे, जैसे कि धोनी थे वहाँ पे, धोनी के साथ सैफ अली खान और तैमूर भी दिखे थे। सो या काफ़ी लोग लॉर्ड्स पे दिखे, आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर सम बिग न्यूज़, लेकिन अब तक मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी कुछ न्यूज़ आई है बाहर। बट यार अर्जुन कपूर अच्छे दिख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे हैं, सो इट्स गुड टू सी हिम दैट वे। एंड या आई थिंक दे बोथ लुक ग्रेट टुगेदर, साहिबा बाली एंड अर्जुन कपूर। आई थिंक फॉर अ चेंज अर्जुन कपूर इज़ इन द न्यूज़ फॉर समथिंग नॉट नेगेटिव, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। अच्छा, एनी वे अभी के लिए एक गाना सुनते हैं।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है और यहाँ पे मैं अभी आपके साथ मिस्ट्री सॉन्ग खेलने वाला हूँ। वैसे उससे पहले यहाँ पे मैसेज आया, बिनीता थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, यू ऑल्सो हैव अ ग्रेट वीक। मैंडी आपका भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। और मिस्टर माटा माटा राम राम आपका भी यहाँ पे मैसेज आया है, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे आपने लिखा है एंड होप यू ऑल्सो हैव अ लवली डे। आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो 5599 पे। बट फॉर नाउ आप मुझे बताइए, आपको ये गाने का थोड़ा सा मैं स्टार्ट सुनाऊंगा, आपको गेस करना है ये गाना है कौन सा। एंड इफ़ यू वांट गिव मी अ कॉल हियर इन द मॉर्निंग 0800-004-866 ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो और आप मुझे यहाँ पे हिंट दे सकते हो, मतलब मुझे नहीं लेकिन हमारे लिसनर्स को आप हिंट दे सकते हो कि ये गाना कौन सा है, क्या लगता है। बताइए कौन सा है ये गाना। देखो मेरे को लग रहा है जो ऐसा जो फैन है ना, फैन को मेरे को लग रहा है इतने इसमें ही पता चल गया होगा, लेकिन आप गेस कीजिए यहाँ पे, बताइए मुझे कौन सा गाना आपको लग रहा है ये गाना है। एक और बार आपको सुनाता हूँ एंड यू कैन मैसेज ओवर यार 5599 पे भी, BF कीवर्ड के साथ आप मैसेज कर सकते हो। बट अभी के लिए आप सुनिएगा, कॉल अगर कोई कर सकता है, कॉल करके अगर कोई हिंट दे सकता है तो मज़ा ही आ जाएगा।

0: अच्छा आ गया आ गया, एक एक मैसेज तो आ गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ गया, चलो बढ़िया है। आप भी यहाँ पे सोच सकते हो और मैसेज कर सकते हो, यू हैव सम टाइम, मैं आपको कुछ मैसेजेस सुनाऊंगा यहाँ पे एंड देन आफ्टर सम टाइम आई विल प्ले द सॉन्ग। बट उससे पहले सेंड योर मैसेजेस, गेस कीजिए कौन सा गाना है ये आपके हिसाब से।
1: 80s के रेट्रो गाने।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Breakfast Catch Up.
2: ब्रेकफास्ट कैचअप जारी है आपके लिए. वैसे 7 बजे के बाद नेक्स्ट आवो में आपके लिए मैं मेरा फेवरेट सेगमेंट लेकर आऊंगा और शायद आपका भी फेवरेट सेगमेंट, बिकॉज उसमें हमें पता चलेगा ना कि हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है. यस, इट इज़ द राशि वाइब्स. और आज मैं टॉप 3 राशीज में को जो यहाँ पे मैसेज आएंगे, मैं उन टॉप 3 राशीज के ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा. तो आप मेरे को यहाँ पे 3 राशीज जो आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक यू कुड जस्ट से 1 राशि, बट मैं टॉप 3 राशीज यहाँ पे पिक करने वाला हूँ जिसके लिए सबसे ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, उनके ऊपर मैं एक्स्ट्रा ध्यान दूंगा आज. इट इज़ योर लव दैट इज यू नो मेकिंग दिस सेगमेंट सो मोर इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. 0800-004-866 पे कॉल करके भी आप बता सकते हो, या फिर 5599 पे आप मैसेज करके यहाँ पे बता सकते हो मुझे BF कीवर्ड के साथ, आज आप कौन सी राशि के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जानना चाहेंगे. और मैंने आपको एक सवाल पूछा था जिसके आंसर्स ज़्यादा ऐसे खुल के आए नहीं है यहाँ पे मेरे पास, बट बेसिकली एक गाने का आपको मैं इंट्रो सुना रहा हूँ और आपको गेस करना है कि ये गाना है कौन सा. आपको हिंट भी देता हूँ मैं, ये गाना जिसके ऊपर फीचर है, इनके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी थोड़ी बहुत, बट देर इज़ दिस वन डायलॉग बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अराउंड दिस एक्टर. आपको गेस करना है ये गाना, ये जो म्यूजिक है ये कौन से गाने का इंट्रो है. This song has been one of the most loved songs of its time. और आज भी मुझे लगता है ये गाना उतना ही जवान है जितना मतलब जितना हम ज़्यादा इसको सुनते ना उतना ज़्यादा ये और भी मतलब हमें जवान फील कराता ये गाना शायद. Anyway, आप यहाँ पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो what do you think, which song is this. After this song, I'm gonna play the song. I'm gonna reveal ये कौन सा गाना है. तो आपके पास 4 मिनट का समय है to still think and put in your guesses. बहुत ज़्यादा सुना दिया मैंने अभी तो. Anyway, एक ऐसा गाना आपको सुना रहा हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बॉम्बे वाइकिंग्स का ये सॉन्ग. और इस गाने के अराउंड भी काफ़ी मेमोरीज है आपकी शायद.

थ्रोबैक में आपके लिए एक वो गाना लेकर आ रहा हूँ जिसके बारे में आज मैंने आपको हिंट मांगे थे, मैंने आपको सुनाया था मिस्ट्री सॉन्ग हमारा, बहुत डिफिकल्ट था मुझे लग रहा है आज गेस करना, बट यस द सॉन्ग इज फीचरिंग नन अदर देन अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। यस, इमरान हाशमी की बात कर रहा था मैं, उनका गैंगस्टर मूवी का ये गाना जो बहुत ज़्यादा पसंद आया था लोगों को, खुद गिटार लेकर वो बजा रहे थे इस गाने को। स्नेहा थैंक यू सो मच, आपका मैसेज आ गया है यहाँ पे, बढ़िया। ये गाना आपके लिए अभी लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूँ कि एक अवार्ड विनिंग एग्जीक्यूटिव और न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट रिसिपियंट, इन्होंने फेस किया है सम गफला अराउंड टैक्स पेयर फंड्स, इन्होंने कुछ गफला ऐसा मतलब ऐसे बातें हुई है जहाँ पे उन्होंने कुछ गफला किया है अराउंड टैक्स पेयर फंड्स, और ये चेयर बने ऑफ फायर एंड इमरजेंसी न्यूजीलैंड बोर्ड, इसके अराउंड कुछ और डिटेल्स हैं जो आपके तक पहुँचाऊँगा मैं बस थोड़ी देर में इन द नेक्स्ट आवर, बट अभी के लिए दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर यू।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल काफी कमाल अभी के लिए, फील्स लाइक 9 डिग्रीज, लेकिन आज बारिश होने की संभावना है और काफी बारिश हो सकती है आफ्टरनून से लेकर इवनिंग भी. आइसोलेटेड शावर्स सुबह सुबह हो सकते हैं. वैसे ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर गोइंग टू गो एज हाई एज 14 डिग्रीज. 7:28 को होगा सनराइज.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
1: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. 7:03 हुए हैं ऑन द 20th of July. हाय, मेरा नाम है रुजबे और मैं हूं आपके साथ यहां पे आज 10 बजे तक. एक से एक गाने तो आपको सुनाऊंगा ही, बट आपके साथ इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी यहां पे लेकर आऊंगा. और आज अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग है आज की. काफ़ी लोग आज काम नहीं करने वाले हैं, एटलीस्ट सुबह के लिए तो, बिकॉज फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल शुरू हो चुका है अर्जेंटीना और स्पेन के बीच, जिसके अपडेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे लाते रहूँगा. लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी देर में आपके लिए यहाँ पे राशिफल भी होने वाला है और क्या चल रहा है न्यूजीलैंड में, इसके अराउंड थोड़ी बहुत बातें भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा. वैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा ACC के अराउंड कुछ स्ट्राइक की बातें हो रही है, थोड़ी देर में आपके साथ उस बारे में भी शेयर करूँगा डिटेल्स. बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग अराउंड टाउन, जैसे कि जो नेशनल टोल रोड प्लान है इसके अराउंड भी कुछ अपडेट्स आई है जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं बस थोड़ी देर में. सुनते रहिए हम लिंक बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. वैसे ऐसा लग रहा है कि आज 20th of July is World Protest Day. नहीं ऐसे मजा करो, लेकिन ऐसा लग रहा ही है क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड में भी ACC के कुछ जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं इस हफ्ते, एंड इसके अराउंड बातें हो रही है क्योंकि कुछ ग्रीवियंसेस हैं जिनके बारे में ये थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहते हैं. So yeah, there's going to be some kind of strikes. इसके details आपके साथ हम और भी share करेंगे. But strikes की और बात करें और protest की अगर बात करें तो आज 20th of July आपने social media पे अगर आप हो तो आपने देखा होगा बहुत बवाल चल रहा है social media पे around protest that's happening. Hunger strike चल रही है and that's for the leaked papers. और आज का दिन मुझे लग रहा है is going to be the most important day क्योंकि आज के दिन अब वो लेकर जा रहे हैं सांसद तक ये प्रोटेस्ट को, एंड वहाँ पे पता चलने वाला है कि इसका क्या होने वाला है, हशर क्या होगा इसका. इसके अपडेट्स भी होपफुली आपके लिए हम लाते रहेंगे यहाँ पे, बट थोड़ी देर में आपके लिए राशि वाइब्स ओनली ऑन हम.

0: Rashi Vibes.
1: You're listening to Hum. Good morning, Rashi Vibes में आपका स्वागत है. आपके लिए यहाँ पे राशि अपडेट्स हम लेकर आते हैं. एंड आज 20 जुलाई के लिए क्या आप तैयार है कि आपके साइन आपके लिए क्या कह रही है? Well, I am hoping आप तैयार है. एरीज के साथ शुरू करते हैं. मेष राशि, आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है? आज एरीज, आज मून आपको फुल ब्लेसिंग दे रहा है और करियर पर फोकस स्ट्रांग है, लेकिन किसी आउटसाइडर को उधार देने की गलती मत करना, वरना वो पैसा बाबा जी का ठुल्लू बन जाएगा. टॉरस, वृषभ राशि आपके लिए कहा है, मून एकदम पॉजिटिव चल रहा है और हेल्थ शानदार रहेगी. कुछ भी, मतलब मैं टॉरस हूँ और मेरी हेल्थ की तो वाट लगी है. एनीवे, बस बॉडी थोड़ा रेस्ट मांग रही है, तो ऑफिस में ज्यादा हीरो मत बनना, चुपचाप ब्रेक्स लेते रहो. अच्छा, सिक डे कॉलिंग. एनीवे, जेमिनी, मिथुन राशि आपके लिखा है, आज स्टार्स थोड़े नेगेटिव है, चुगलखोरों से दूर रहो, नहीं तो किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाओगे. नए इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दो और पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनो, यानी कि छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान मत कर बैठना. कैंसर, कर्क राशि आपके लिए कहा है, लॉसेस अब प्रॉफिट्स में बदलने वाले हैं और बॉस आपके काम की तारीफ करेगा. घर पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बस पार्टनर्स के साथ ईगो साइड में रखकर थोड़ा रिलैक्स करो. पार्टनर्स के साथ ईगो, इम्पॉसिबल. वेल, हर कैंसर मर्द थोड़ी होता है. एनीवे, लियो की बात करते हैं. सिंह राशि, ऑफिस में फुल बिजी और एंथुजियास्टिक रहोगे, काम बुलेट ट्रेन की स्पीड से खत्म होगा, लीडरशिप चमकेगी, बस एम्बिशन के चक्कर में कलीग्स पर चिल्लाना मत. लियो, आज आपको संभल के रहना है थोड़ा. वर्गो, कन्या राशि आपके लिए कहा है, प्रैक्टिकल विजडम और कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहने वाला है. नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दिन बेस्ट है, बस थोड़ा क्वाइट माइंड रखो और ओवर एनालाइज मत करो. टेक इट ईजी टूडे. वर्गो, लीब्रा यानी कि तुला राशि आपके लिए कहा है, अबंडेंस और लक दोनों आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं. मून आपके ही साइन में है बैठा है, तो दोस्तों और पार्टनर पर थोड़ा प्यार बरसाओ. आज आप ही मोहल्ले के किंग हो. अच्छा, आज आप किंग हो लीब्रा. स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, फ्रेंड्स और मेंटर्स से कोई बढ़िया प्रोफेशनल एडवाइस या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. सबका काम अकेले करने का के सुपर हीरो मत बनो, टीम वर्क से काम चलाओ और डिस्ट्रैक्ट मत होना आज के दिन. सैजिटेरियस, धनु राशि आपके लिए कहा है, आप आज तो अलग ही जोन में चल रहे हो, जमीन से 2 इंच ऊपर चलने वाली फीलिंग है. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और करियर मैनेजमेंट पर ध्यान दो, पेशेंस रखोगे तो दिन सॉलिड जाएगा. तो आज आपको पेशेंस के साथ काम लेना है. सैजिटेरियस. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आपके लिए कहा है, पुरानी टेंशन या सैड वाइब्स को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है. रिसर्च राइटिंग या प्लानिंग के लिए दिन परफेक्ट है, बस कोई भी कमिटमेंट करने से पहले पूरी डिटेल्स निकाल लेना. ऐसे ही आग बंद करके कोई भी चीज़ पे कमिटमेंट करके सलमान खान मत बनना. आप पहले रिसर्च करना, अच्छे से सारी डिटेल्स निकालना और फिर कमिट करना. एक्वेरियस, कुंभ राशि आपके लिए कहा है, फाइनेंशियल मामलों में इमोशनल होकर डिसीजन मत लेना, लॉजिक लगाओ. नए एजुकेशन या हेल्थ प्लान्स के लिए दिन अच्छा है, बस थोड़ी नींद पूरी कर लो, बाकी सब सेट है आपका. पाइसेस, फाइनली मीन राशि आपके लिए कहा है कि स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल सर्विस में मन लगेगा आपका. डिसिप्लिन रहकर काम करोगे तो स्टेडी प्रोग्रेस मिलेगी, बस दूसरों की चिंता में अपनी हेल्थ का खर्चा मत करना. तो दूसरों के बारे में कम सोचना, आज खुद के बारे में आप ज्यादा सोचना. पाइसेस, वेल, दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर द डे. होप यू हैव अ ब्लेस्ड डे.

0: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
7: At Bunnings, there's some really easy things you can do to modernise your kitchen. You'll be surprised at how little it costs, and they just look amazing. Whether you own your own home or whether you're renting, rejuvenate your kitchen and make it look fabulous.
8: Get your kitchen sorted with a Prakta trimmable utensil tray, only $15. A Mistral White cordless kettle, $19. And a very handy Caboodle spice tray, just $15.
7: Bunnings makes DIY easy.
9: Bunnings Warehouse.
7: Lowest prices are just the beginning.
10: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. TNCs apply.
11: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
12: IKEA.
13: TradeDepot.co.nz. Trade Depot home appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
14: TradeDepot.co.nz.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
17: Bollywood's most wanted.
18: Kundi khad jao. Ya seedha andar aao.
19: Main laun apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: अलार्म हिट इट।
1: सेलिब्रिटी अलार्म में आज आपको एक सेलिब्रिटी की आवाज़ सुनाऊंगा और आपको यहाँ पे गेस करना है कि ये सेलिब्रिटी कौन है। रिसेंटली एक चर्चे में रहे, एक ऑडियो उनकी वायरल हुई है, एक मतलब वीडियो उनकी वायरल हुई है, तो उसी वायरल पीस आपको सुना रहा हूँ और आप गेस करके बताइए यहाँ पे क्या लगता है आपको ये सेलिब्रिटी कौन है। अगर आप यहाँ पे कॉल करके इसको फन करना चाहते हो तो आप कॉल करके यहाँ पे हिंट दे सकते हो कि इस सेलिब्रिटी के अराउंड और हिंट्स क्या हो सकते हैं ताकि दूसरों को पता चले कि ये एक्चुअली सेलिब्रिटी है कौन। सो लेट्स हैव अ लिसन। थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है इतना, बट मेरा भी कहाँ ही क्लियर है।
2: But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots.
1: बताइए कौन है ये जो ये बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे हिंट भी दे सकते हैं अगर आपको हिंट देना है तो। हाय, गुड मॉर्निंग।
3: मॉर्निंग
1: जी, आपने सुना ये सेलिब्रिटी कॉलर?
3: हाँ हाँ, ये उसकी आवाज है जो आजकल इंडिया में काफी सारे हिंदू ग्रुप्स जो बोल रहे हैं जिहाद, तीसरी शादी कर ली।
1: अच्छा, ओ ओके ओके, ठीक। यार अच्छा ठीक है,
3: क्या हो गया?
1: नहीं नहीं, बढ़िया है। मैं क्या बोलूं अभी इसके ऊपर? थैंक यू। हाय, आपका भी स्वागत है।
4: हेलो
1: जी, गुड मॉर्निंग।
4: ये आवाज तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की है ना?
1: क्या बात है, चलो बढ़िया है, वेरी नाइस, गुड हिंट।
4: ओके,
1: थैंक यू, थैंक्स। मैसेज आ गया यहाँ पे विधि, थैंक यू सो मच, आपका भी यहाँ पे मैसेज आया है। विकास, आपने भी यहाँ पे सही मैसेज किया है। सिमरन, यस, यू हैव आल्सो गेस्ट इट राइट। आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो 5599 पे BF कीवर्ड के साथ।

0: from Constellation. On the southwestern, heading southbound, a crash at Mangere Bridge just before Mahunga Drive, blocking the right lane, pretty slow there. Southern, slow all the way from Papakura, northwestern, slow from Massey.
1: Get 20% off selected Lego themes, ends tomorrow at The Warehouse.
2: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
3: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas pooch hui mat. Ek hafta ho gaya, no response. Fir tumne Guru ka number diya aur bas agle din paise mere account mein. Guru to ho ja shuru wala kaam hai.
6: Guru Kandola of Logic Finance, a household name in finance and insurance industry. Call 0800 Logic G. That's 0800-564-424.
7: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand. Let's get connected.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari good brands me.
10: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: News headlines.
14: गुड मॉर्निंग 7:33 AM और आज की न्यूज़ में देखें तो नया इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बोर्ड इज़ ऑफिशियली ओपन और इन्होंने लॉन्च किया है एक कंप्लेन बटन जहां पे अगर किसी को कोई भी गवर्नमेंट जो रूल पासिंग हो रहा है उसके अराउंड कोई भी दिक्कतें हैं कुछ है तो वहां पे वो जाके उसमें अपने कंप्लेन बॉक्स मतलब कंप्लेन डाल सकते हैं सो एक ऑफिशियल कंप्लेन बॉक्स ओपन हुआ किया गया है looking for feedback now. That's great. Fiji में देखे तो Fiji Airways continue कर रही है अपना massive operational expansion. नया code share routes उन्होंने launch किए हैं to position Nandi as premier transit artery connecting North America, Asia and the South Pacific. It's a big news for Fiji and Fiji Airways as well. इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा बैटरी रेवोल्यूशन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही है मैसिव ग्लोबल हाउसहोल्ड एंड ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज ट्रांजिशन पे और ये सिग्निफिकेंटली कट डाउन करने वाले पीक प्राइसिंग और अपने पावर ग्रिड को स्टेबलाइज करने की कोशिश है इनकी US और ईरान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है एक अटैक हुआ जिसके कारण US के एक सर्विस मेंबर जॉर्डन में उनकी मौत हुई ट्रेजिकली और इसके बाद अब US मिलिट्री ने लॉन्च किया है मेजर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी FIFA World Cup की अपडेट्स भी आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहेंगे द मैच हैज़ बिगन द फाइनल अर्जेंटीना वर्सेज Spain और इसके डिटेल्स भी आपके साथ यहाँ पे हम शेयर करेंगे बट दिस वाज द न्यूज़ हेडलाइंस फॉर टुडे
15: बर्थडे ग्रीटिंग्स
16: इसका बर्थडे भाई
17: मेरा भी बर्थडे चलो लाइन में आ जाओ
16: हैप्पी बर्थडे टू यू
14: आ आज है 20th of July और आज का दिन खास है अगर आपके लिए, आपको आज के दिन की ढेर सारी बधाई। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज प्रियंका अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। प्रियंका विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके हस्बैंड रवि की ओर से आपके लिए बर्थडे विशेज आई है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड होप आपका ये जो साल है वो बहुत ही बढ़िया गुजरे। बहुत बहुत

बधाई आपको आज के दिन की। इसके साथ साथ आज केशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। केशा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार आ रहा है, आपके डांस स्कूल खोटे सिक्के से जो आपके लवली स्टूडेंट्स हैं, ये आपको तहे दिल से विश करना चाह रहे हैं, और बहुत सारा प्यार आपकी फैमिली की ओर से और आपके सारे दोस्तों की ओर से। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके साथ साथ आज कश्यप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कश्यप, आपको भी ढेर सारी बधाई आज के दिन की। हैप्पी बर्थडे टू यू। रानी की ओर से आपके लिए यहाँ पे विशेज आए हैं, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आज आप भी अगर आपका खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताइए यहाँ पे 5599 पे। एंड बेस्ट विशेज टू यू, हैप्पी बर्थडे।

0: की झिलमिल झिलमिल गड़बड़ गड़बड़ दुनिया में देखो मैं कितना अकेला हूँ।
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Agoj Band का ये बहुत ही बढ़िया सा गाना आपके लिए Only on Hum Right Now Breakfast Show में। Well, मंडे की सुबह है और मुझे लग रहा है हर कोई जो जो अभी काम के लिए निकला है वो इसी रीजन के लिए काम से निकला है जो इस गाने में एक्सप्लेन किया गया है। तो एक बहुत ही हटके सा गाना आपके लिए। आई होप आप एंजॉय करें इस सॉन्ग को। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा सेलिब्रिटी अलार्म में आज जो सेलिब्रिटी के बारे में मैंने बात की थी वो एक्चुअली में थे कौन।

0: 1994 में ये बैंड बना था, इंडियन पॉप पंक बैंड, आगोश नाम था इस बैंड का, और इस इनका ये जो गाना 2002 में रिलीज हुआ था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा हिट हुआ, कुछ लोगों को याद होगा ये गाना, बट इस गाने मतलब 2002 में ये गाना बनाया था, लेकिन आज भी ये गाना इतना रेलेवेंट है, मतलब आज भी हम उसी हसल में हैं कि भाई पैसा कैसे कमाएं ज़्यादा। बट या एनीवे, आपको सेलिब्रिटी अलार्म में मैंने एक यहाँ पे एक क्लिप सुनाई थी और मैंने आपको कहा था कि आप गेस कीजिए ये कौन है एक्टर जिसमें इन्होंने बात की है, तो मैं सुना देता हूँ आपको ये क्लिप छोटी सी, बहुत बढ़िया से हमें आंसर्स यहाँ पे आए हैं और हिंट तो लाजवाब हिंट्स आए थे।
1: But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat were the two writers, nor I. We didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him.
0: ये जो है ये आमिर खान की आवाज़ है और ये रिसेंटली यूके में थे कहीं पे, इन्होंने एड्रेस किया एक क्वेश्चन अराउंड सोनम वांगचुक जो करेंटली मतलब जो थे हंगर स्ट्राइक पे, अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गए। बट एनीवे, इनको जब पूछा गया कि आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि और कोई बात नहीं कर रहा था जब तक ओमी वाइद्या जो चतुर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे थ्री इडियट्स में, इन्होंने जब वीडियो बनाई तब जाकर ये आमिर तक बात पहुँची, और फिर आमिर खान ने बोला नहीं नहीं ये तो जो रैंचो का कैरेक्टर है वो इनके ऊपर बेस्ड है ही नहीं। यार मैं लेह लद्दाख की ट्रिप मारा है यार जब, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी थ्री इडियट्स फेवरेट मूवी है और मैं बोला कि रैंचो का कैरेक्टर मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैं लेह लद्दाख उसके लिए ट्रिप मारा मैंने, ताकि मैं जाके देखूँ वो स्कूल जहाँ पे इतना सब क्रिएटिविटी हुआ था, इनोवेशन हुआ था। और अब आमिर खान ने मेरा वो भ्रम ही तोड़ दिया, बोला कि नहीं नहीं उसके ऊपर फीचर ही नहीं है। यार ये तो बहुत ही मतलब विश्वासघात टाइप हमें फील हुआ है, मतलब मुझे तो फील हुआ है, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था। इनफैक्ट मैं जानता हूँ सोनम वांगचुक को बिकॉज ऑफ थ्री इडियट्स, दैट शोज कि मैं कितना अनअवेयर हूँ अबाउट द वर्ल्ड, क्योंकि मेरे को बॉलीवुड से मेरे को रेफरेंसेस मिल रहे हैं। बट एनीवे, जो हमें बॉलीवुड से रेफरेंसेस मिले शायद वो सब सही नहीं है, शायद हम अपना अलग ही इमेजिनेशन कर रहे थे। एनीवे, आई थिंक इफ इट वर्क्स इन फेवर देन दैट्स गुड। आई थिंक
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Accurate traffic.
4: The food show starts Thursday.
5: Cloudy today with a high of 14. Northern motorway coming in a crash just after Constellation. It's crawling river to Milford. Fine to Takapuna, then slow there to Esmond. 24 minutes in from Constellation. Southwestern, very heavy southbound from Mount Roskill to Mangere Bridge. There's a crash just before Mahunga Drive, blocking the right lane. Southern 44 in from Manukau. We're slow from Papakura. Northwestern 36 from Massey. Slow from there.
4: Your foodie adventure awaits. Auckland Showgrounds. Tickets at foodshow.co.nz.
6: At Specsavers Winter to sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
7: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus, score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See you live for T's and C's.
8: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
9: Dash! Fiji is on sale now at Flight Center. Enjoy the ultimate tropical escape with five nights plus flights from $1,999 per person. Book in store today. Departs Auckland. Fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
3: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
10: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800

थ्रोबैक में एक मस्त गाना आपके लिए यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। ऐसा गाना जो आपको एकदम ही मस्त मूड में लेकर आएगा सुबह सुबह। पता नहीं बाहर का माहौल क्या है, बारिश हो रही है क्या हो रहा है, अभी जाके चेक करूंगा मैं। लेकिन 8 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे टॉपिक ऑफ द डे लेकर आऊँगा। एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसमें मैं चाहूँगा कि आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करें। नंबर याद रखिएगा 0800 004866। इस पर कॉल करना है आपने 8 बजे के बाद और टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है मेरे साथ।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: फॉग है कुछ जगहों पे, काफ़ी जगहों पे बारिश होने वाली, आइसोलेटेड शावर्स भी रहेंगे और आफ्टरनून में जाके आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑल अराउंड बारिश काफ़ी जगहों पे आज आप एक्सपीरियंस करेंगे. 7:28 को सनराइज हुआ, सनसेट होगा 5:28 पे आज. फील्स लाइक 8 राइट नाउ. During the day, 15 degrees तक होगा high.
0: DJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: 8:03 on the 20th of July. Good morning. You're listening to the breakfast show. मैं हूँ रुज़बे, आपके साथ यहाँ पे 10 बजे तक. Well, क्या ट्रेंड हो रहा है अभी? एक ही चीज ट्रेंड हो रही है हर जगह और वो ये है FIFA World Cup का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच हाफ टाइम तक पहुंचा है. एंड इट्स क्वाइट अ टफ गेम. अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ है किसी भी टीम की ओर से. So it is at nil right now. And let's see second half mein kya hone wala hai. Spain kafi tough fight de rahi hai to the defending champions. And yeah, let's see if it's going to go into the penalty shootouts aaj. Iske updates aapke liye hum yahan pe aapke laate rahenge. But thodi der mein aapki madad ki zarurat hai. Yahan pe ek topic lekar aunga aapke liye. Aur aapse janna chahunga ki aapka uske upar kya take hai. 0800-004866 is the number. Be ready to give me a call. ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूँ आज, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पे. See, I'm keeping it up to you. 5599 पे BF keyword के साथ अगर आप मैसेज करते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप चाहते हो कि मैं छेड़ूँ आज. छेड़ने वाली बातें यार आप मेरे से करवा रहे हो. और एनी वे प्लीज़ यहाँ पे मैसेज कीजिए. यहाँ पे मैसेज भी आया, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुख एंड कुश. गुड मॉर्निंग टू यू टू. एंड जी मैसेजेस करते रहिए यहाँ पे या फिर कॉल कीजिए 0800-004866. थोड़ी देर में आपके लिए टॉपिक ऑफ द डे.

You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. वैसे आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाह रहा हूँ. तो एक करंटली एक बिल के बारे में बात हो रही है, लीव बिल है ये, और इसका इसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत बैकलैश भी आ रहा है. मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्या है कोर चेंजेस ये बिल को लेकर. एंड द बिल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द लीव बिल. अब इसमें ये कुछ चेंजेस ऐसे है कि अभी करंटली क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी काम करना शुरू करते हो तो आप लीव्स ले सकते हो, लाइक सिक लीव ले सकते हो 6 महीने के बाद, और एनुअल लीव ले सकते हो 12 मंथ्स के बाद, क्योंकि आपकी लीव अक्रू होती है उस 12 मंथ पीरियड के बाद. बट जो ये चेंजेस आ रहे हैं बिल में, इसमें अक्रूअल फ्रॉम डे वन होगा, जहाँ पे आपको एक साल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं रहेगी और 6 महीने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होगी फॉर सिक लीव. आप जो लीव्स है आपकी अक्यूमुलेट करोगे फ्रॉम डे वन, फर्स्ट डे ऑफ द जॉब से ही आपकी लीव्स अक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा. देन कुछ और भी है उसमें, 3 क्लासेस ऑफ आवर्स है. तो ये जो बिल है ये ब्रेक डाउन कर रहा है स्टैंडर्ड, एडिशनल और कैजुअल आवर्स. तो लीव जो है वो अक्रू करेगी अकॉर्डिंग टू दैट. इट विल प्राइमरीली अक्रू ऑन स्टैंडर्ड आवर्स. फिर प्रोरेटेड सिक लीव है. पार्ट टाइम वर्कर्स को अभी रिसेंटली फ्लैट 10 डेज मिलता है सिक लीव, बट विथ दिस न्यू बिल पार्ट टाइम वर्कर्स को भी प्रोरेटेड सिक लीव मिलेगी. सो इट विल बी प्रोपोर्शनेट टू द आवर्स दे वर्क. लीव कॉम्पनसेशन पेमेंट जो है ये कैजुअल आवर्स के लिए यूजुअली होता है. तो ये इसमें 12.5% लीव कॉम्पनसेशन पेमेंट मिलेगा कैजुअल वर्कर्स को ऑन टॉप ऑफ देयर आर्ली रेट. एंड देन देर इज़ अ हायर कैश अप कैप एज वेल, जहाँ पे वर्कर्स विल नाउ बी एबल टू रिक्वेस्ट कैश आउट अप टू 25% ऑफ देयर टोटल एनुअल हॉलीडे बैलेंस ईच ईयर. सो कैश आउट कर सकते हैं 25% ये सारी चीज़ें पास हो रही है इस बिल में. एंड इसके अराउंड लेट्स सी, थोड़ा बहुत चर्चा हो रही है कि कुछ लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ लोगों का बेनिफिट कम किया जाएगा, ये सारी बातें हो रही है. मुझे आपसे जानना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपको इससे क्या अफेक्ट होने वाला है. डू यू थिंक यू वुड बी एडवांटेज्ड बाय दिस, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत डिसएडवांटेजेस रहेगा मेरे लिए, या आप बोलते हो कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है. क्योंकि मुझे लग रहा है वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विथ इज़ अगर वो नया काम शुरू कर रहे हैं, पहले 6 महीने तक अगर आप सिक लीव नहीं ले सकते हो तो उसमें काफ़ी बार दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि यार बीमारी तो कभी भी हो सकती है ना. तो उसके लिए बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर्स समटाइम्स अ वेरी यू नो अंडरस्टैंडिंग एज वेल, कि वो नहीं इतना कंसिडर करते 6 महीना रुकने की ज़रूरत. बट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके अराउंड, अगर आप ये शेयर करना चाहो तो 0800-004-866 इस नंबर पे आप कॉल करके शेयर कर सकते हो, या 5599 पे आप मैसेज भी कर सकते हो. एक गाना सुना रहा हूँ आपको मोहित चौहान की आवाज़ में, ऐसा गाना है जो मुझे हमेशा मोटिवेट कर देता है, और सुबह सुबह ये गाना सुनना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया होता है. डॉक्टर्स ने कहा है ये, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, डॉक्टर्स ने नहीं कहा है, बस मेरा कहना. मोहित चौहान की आवाज, ये जवानी है दीवानी का गाना, एंजॉय कीजिए. ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM पे, और सिटी के अंदर 87.7 FM पे भी.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: It's the last day to load up on truckloads of savings at Briscoe's Half Price Sale, with half price off every single item in store nationwide. Hurry, half price off the entire store ends tonight at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
3: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. Squirrel.co.nz.
4: Hi, Stephen Fleming here. I used to be a captain, but most people know me as the Fujitsu guy. We're now General. We've changed our name, but not who we are. You can expect the same trusted quality and service that has made us New Zealand's favourite air. So, there you have it. Other than our name, nothing's changed. Not even me. Except now I'm the General guy. Come home to comfort. Just get a General. It's New Zealand's favourite air.
5: Get a General.
6: Trade Depot home appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
11: Good morning, you are listening to The Breakfast Show. 8:18 हुए हैं 19 मिनट एक्चुअली टू बी प्रिसाइस वैसे मुझे एक आज बात करनी है अबाउट द बेस्ट कमबैक स्टोरीज आपकी बेस्ट कमबैक स्टोरी जो आपको पता है कौन सी ऐसी कमबैक स्टोरी है जो मतलब यू नो आपको ऐसा लग रहा है कि यार इससे बेटर कमबैक ना मैंने नहीं देखा है या फिर ये बहुत ही बढ़िया कमबैक स्टोरी है मैं कमबैक स्टोरीज के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हिस्ट्री हुई है रायन फॉक्स ने पुल ऑफ किया एक मिरेकल एट द रॉयल बर्गडेल बर्गडेल्स 18th होल और उन्होंने जीता है ब्रिटिश ओपन गोल्फ पे इन्होंने ये जीता है और रायन फॉक्स हमारे न्यूजीलैंडर ही है जिन्होंने आई थिंक लास्ट कोई न्यूजीलैंडर ये जीता था वॉज इन 1963 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो 1963 में बॉब चार्ल्स ने जीता था ये खिताब जो 154th ब्रिटिश ओपन एट रॉयल बर्गडेल आज रायन फॉक्स ने जीता है एंड मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी इसमें एक कमबैक स्टोरी है क्योंकि इनका एक्चुअली में जो गेम था काफ़ी टाइट जा रहा था एंड ही हैड अ मिराकुलस विन टूवर्ड्स द एंड मुझे आज आपसे जानना है कि व्हाट इज़ दैट एकदम मिराकुलस कमबैक स्टोरी जिसके बारे में आपके माइंड में कुछ है मतलब अभी मेरे माइंड में एक कमबैक स्टोरी है वो है क्रिकेट के अराउंड बिकॉज मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है बट इट इज़ अराउंड टेस्ट मैच सीरीज जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था जहाँ पे द्रविड और लक्ष्मण ने एक बहुत ही बढ़िया लंबा रन स्टैंड रखा था और जिससे एक टेस्ट मैच को बचाया था ये मेरे लिए अगर कमबैक की बात करते हो तो मेरे लिए वो स्टोरी मेरे मन में सबसे पहले आती है तो ऐसे आपके मन में कमबैक स्टोरी कौन सी आती है सबसे पहले ये आप यहाँ पे मुझे कॉल करके बता सकते हो हाय आपका स्वागत है
12: मॉर्निंग रुज़बे
11: गुड मॉर्निंग
12: रुज़बे वैसी स्टोरीज बहुत है अगर तुम ऐसे पूछोगे तो मेरे पास वो स्टोरी है कि विराट कोहली और धोनी की जो एक मैच थी आई डोंट रिमेम्बर द मैच लेकिन लास्ट 3 ओवर्स में हमने वो मैच जीती थी ऐसी बहुत स्टोरीज है लेकिन इफ यू मे आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माय पर्सनल लाइफ
11: बताइए ना
12: तो दिस इज गोइंग बैक इन मेरे दादाजी के टाइम व्हेन मेरे दादाजी एंड मेरे परदादाजी कमिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो इफ यू नो द कोस्टल साइड ऑफ इंडिया दैट इज नियर गोवा सो कोकण एक्चुअली. सो दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम कोकण टू मेन लैंड इट कॉज टू बी पुणे एक्चुअली तुला माहिती पुणे. तो पुणे में वो गए और फिर उन्होंने मिल्क का बिजनेस शुरू किया. तो वहां से वो मिल्क लेते थे फार्मर से या डेयरी ओनर से और फिर वो बेचते थे ऐसा उनका बिजनेस था बेसिकली. एक दिन मतलब मेरे दादाजी के लिए लड़की देखने के लिए गए थे तो लड़के वाले बोले कि आपके पास खुद का घर है क्या. दैट वॉज द क्वेश्चन एंड दैट वॉज द क्वेश्चन दैट चेंज एवरीथिंग. यू वोंट बिलीव दैट. आई मीन फॉर टूडे इट्स लाइक वेरी सिंपल थिंग बट देन इट वॉज लाइक रियली बिग क्वेश्चन बीन आस्क दैट डू यू हैव योर ओन अबॉर्ड और होम आर नॉट. घर है तो लड़की मिलेगी
11: वो तो अभी भी वही फंड है ना.
12: हाँ मतलब इवन टुडे इट इज रिलेवेंट.
11: नहीं मतलब डिपेंड करता है अगर लव मैरिज है तो फिर वो नहीं होता है शायद से. लेकिन हाँ. अगर अरेंज रहा तो फिर वो रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि फिर हाँ, लड़की तो भी बोलती है ना कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही है तो थोड़ा लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं. हाँ बोलो.
12: तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या ये कैसे किसी ने पूछ लिया. यू नो वी बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड डिसेंट एंड हम्बल मुझे उन्हें लगा कि ये यही काफी है आजकल. लेकिन वो काफी नहीं था. तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ करेंगे कि इसके बाद कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा. तो फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की. सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उन्होंने मेहनत की और फिर दे स्टार्टेड देयर ओन शॉप इन पुणे मेन सिटी में. इमेजिन इन क्वीन स्ट्रीट वी हैव अ बिग शॉप वो सोचो मतलब
11: वैसा
12: है पूरा. तो वो उन्होंने शुरू किया एंड दैट वाज लाइक लिटरली मिरेकल बिकॉज विद इन स्पैन ऑफ 3 or 4 months एक तो हमें पुणे म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट मिल गया ए ग्रेड मिल गया सर्टिफिकेट क्योंकि क्वालिटी अच्छा था और लोगों ने तो भीड़ लगा दी वहां मतलब खाने के लिए भीड़ लगा दी. मतलब वो जो हम अपना जो स्वीट होता है पेड़ा हो गया या फिर खरबूज हो गया ऐसा आइटम तुमको खाने को मिलेगा. पहले था कि ऐसा यू गेट एज अ टेक अवे लेकिन आपको खाने को मिलेगा प्रॉपर कटलरी में. तो ये फर्स्ट टाइम होने हो रहा था पुणे में रादर महाराष्ट्र में.
11: ओह रेस्टोरेंट टाइप फॉर्मेट.
12: हाँ एंड दैट इज गेम चेंजर.
11: नाइस.
12: और फिर ये सुन के फिर आफ्टर मे बी ईयर वो जो लड़की वाले थे वो खुद ही आ गए बोले कि अरे नाउ यू आर सो वेल एस्टेब्लिश्ड. तो वो बोले लेकिन हमारा घर अभी है पीछे लेकिन डिपेंड्स. तो बोले नहीं नहीं नहीं नाउ वी आर हैप्पी. तो शादी तो हो गई उसमें लेकिन हम हमारा नाम हो गया एंड देन दे रन दैट बिजनेस फॉर 70+ years.
11: क्या बात है. बट आपको पता है मेहनत भले आपके दादा ने की होगी लेकिन क्रेडिट हमेशा दादी लेगी क्योंकि दादी बोलेगी मेरे कारण.
12: देखो आज भी मैं उनकी स्टोरी बोल रहा हूं है ना. दैट इज ट्रू.
11: या नहीं परफेक्ट. थैंक्स ओमकार यार. थैंक्स फॉर शेयरिंग मैन.
12: चलो सी यू रुजबे.
11: थैंक्स यार. बाय बाय. That was such a cool story. Well, यहाँ पे एक मैसेज भी आया है. उन्होंने कहा है कम बैक स्टोरी और बाद में हनी सिंह लिखा है. अब ये मुझे पता नहीं कि ये जोक में बोल रहे हैं कि ये सीरियसली बोल रहे हैं क्योंकि एक कुछ मीम भी निकला था ना कि कम बैक हो रहा ही नहीं है. मतलब ऐसा भी कोई एक मीम था बट पता नहीं वो हनी सिंह के लिए था कि नहीं था. बट या हनी सिंह ऑल्सो यार या he's tried to have his comeback so many times. काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं ये कम बैक करने में. और अभी वो 50 गाने भी रिलीज किए थे ना लास्ट उन्होंने एक एल्बम में. या आई थिंक कम बैक स्टोरीज हनी सिंह. यार पता नहीं यार मेरे साथ लोग बहुत मस्ती करते हैं यार. What's your take? आप भी आपका टेक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ तो ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा. एंड मुझे बताना कि क्या लगता है आपको. अगर कोई कमबैक स्टोरी आपके जहन में आपको याद आती है तो ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिए 5599 पे BF कीवर्ड के साथ.
0: इधर अंदर आओ मैं लाऊं अपना A game.
13: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं ब्रेकफास्ट शो विद मी रिज़्बे और आपके साथ मैं हूं यहां पे 10 बजे तक। वैसे एक वर्ल्ड का पहला ऐसा हुआ है, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बीच में एक एसेंशियल सप्लाईज अग्रीमेंट अब फोर्स में आ गया है। यहां पे ये साइन हुआ न्यूजीलैंड में, लैंडमार्क अग्रीमेंट कह रहे हैं इसको, क्योंकि हुआ ये कि अभी जो माहौल है मिडल ईस्ट का, कभी भी एस्केलेट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, वॉर हो रहा है, इसमें सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने एक ऐसा अग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं इसके अराउंड अगर कोई सप्लाई करना है या कुछ करना है, ये एक दूसरे को ये सप्लाई करेंगे। सो सिंगापुर ने गारंटी किया है टू सप्लाई न्यूजीलैंड विद फ्यूल, मेडिसिन एंड केमिकल्स, एंड इन रिटर्न न्यूजीलैंड ने गारंटी किया है टू सप्लाई विद फूड, क्रिएटिंग सर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस एंड सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज। सो क्रिएटिंग सर्टेनिटी फॉर बिजनेसेस एंड सिटीजन्स ऑफ बोथ कंट्रीज, ये न्यूजीलैंड ने गारंटी किया है। पहले हमारे लिए तो ये गारंटी करो भाई, बट एनी वे दिस इज वॉट द पार्टनरशिप इज नाउ इन प्लेस। ये साइन किया गया था सिंगापुर में ऑन 4th of May 2026, विटनेस बाय प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन एंड सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। लेकिन ये 18 जुलाई को इन फोर्स आया। एक सेरेमनी हुई ऑकलैंड में जहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर टॉड मैकले ने ये अनाउंस किया। सो ये काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही है ऑफ लेट न्यूजीलैंड की, स्विट्जरलैंड के साथ भी एक पार्टनरशिप की है इन्होंने। सो या लेट्स सी, होपफुली अच्छे दिन आ रहे हैं यहाँ पे। ओके
1: Accurate traffic. Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
2: High of just 14, mostly cloudy today. A crash coming in on the northern at Constellation has been sorted for a little while. We're heavy on and off Constellation to the city, but not too bad. Half an hour in from Constellation Drive. Southwestern crash southbound at Mangere Bridge sorted, but still pretty heavy from Mount Roskill. Heavy the other way through Whitty. Southern 45 from Manukau, heavy from Otahuhu. Northwestern 42 from Massey, heavy on and off from Upper Harbour.
1: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: The beds are as birthday sale.

0: on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price. Queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Beds are us, Medical and Poke Koke. Celebrating 36 years of great sleep.
1: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
7: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: 104.2 FM or Roa app ke zariye, you're listening to Hum. Vaise एक न्यूज़ आई है बॉलीवुड के अराउंड एंड दैट इज़ अराउंड सलमान खान वैसे कुछ पिक्चर्स सरफेस हो रहे हैं इंटरनेट पे एंड सलमान खान इज़ लुकिंग अ लिटिल डिफरेंट यार मतलब कुछ ट्रीटमेंट शायद चल रही होगी या कुछ चल रहा है बट रिसेंटली एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था फॉर स्लम्स और वहाँ पे सलमान खान आए लेकिन वो इवेंट चर्चे में नहीं रहा सलमान खान ज़्यादा चर्चे में रहे क्योंकि उनका जो लुक है वो थोड़ा अलग उसमें लग रहा था रिसेंटली उन्होंने एक बॉल्ड लुक किया था बट इसमें कुछ अलग ही लग रहे हैं वो काफ़ी एज लग रहे शायद या वीक लग रहे हैं बट दिस डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन अब तक हमें खबर नहीं मिली है लेकिन आज ड्राइव शो ज़रूर सुनना क्योंकि ड्राइव शो में आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट मिलेगी यस यू नो इट मिलेगी आपको डिटेल रिपोर्ट बट हाँ और भी बातें आपके साथ करूँगा सुनते रहिए हम

ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है 10 बजे तक और मैं रुजबे आपके साथ यहाँ पे रहूंगा। वैसे लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं हमारे सुपर सिटी में और परफॉर्म करने वाले हैं एक बढ़िया सा कॉन्सर्ट। इसी वीकेंड पे होने वाला है ये 25th of July एट द ट्रस्ट अरीना। ये जो कॉन्सर्ट है प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन। टिकट्स आपको मिल जाएंगे dryTickets.com पे और विटनेस कीजिए राहत फतेह अली खान को लाइव परफॉर्म करते हुए। बहुत ही बढ़िया ये कॉन्सर्ट लेकर आते हैं आपके लिए एट द ट्रस्ट अरीना एंड गेट योर टिकट्स dryTickets.com पे।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Traffic.
2: Burgers are better at BK.
3: Cloudy most of the day today, high of just 14. Southwestern, we had a crash southbound around Mahunga Drive earlier. It's still quite heavy, Mount Roskill to there, even though it's been cleared. Heavy northbound at Wiri. Southern, 35 minutes in from Manukau, we're fine to Otahuhu. Heavy patches from there. Northwestern, 32 in from Massey. Heavy on and off from Te Aratu. Northern, 26 from Constellation. Heavy there and slow patches to the bridge.
2: From flame grilled whoppers to crispy chicken, the burgers are better at Burger King.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
7: If you're at the finished stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134-TRADE on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
8: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
9: Now I'm here.
8: Back here now.
9: Here I am.
8: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
10: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
11: Lots.
10: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
11: Probably.
10: Am I paying for this free coffee?
11: Definitely.
10: Will they talk me into an upgrade?
11: Oh.
10: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
12: True Midas.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: Throwback.
15: थ्रोबैक में आपके लिए गाना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडी शो होने वाला था इस साल ही होने वाला था शायद से, एंड उसका भी ना स्पेशल आ गया है, वो हो नहीं पाया यहाँ पे। इट गॉट कैंसल्ड ड्यू टू सर्टन रीजंस। ऑस्ट्रेलिया में भी कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, बट उसका मैंने अभी स्पेशल देखा YouTube पे जो रिलीज़ हुआ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमिक है, नॉट मच लव्ड बाय सर्टन सेक, पता नहीं उनके शायद पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ अलग है शायद, या कुछ कहने की बातें जो स्टाइल है वो शायद डजंट सिट वेल विथ एवरीवन। लेकिन इनका मैंने स्टैंड अप स्पेशल देखा, ऑलमोस्ट 2 घंटे का ये स्टैंड अप स्पेशल है, एंड ही हैज़ स्पोकन अबाउट हिज जर्नी। एक भी पॉलिटिकल जोक नहीं है उसमें, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट और एनी सिस्टम और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इज जस्ट हिज पर्सनल स्टोरी एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, हिज पर्सनल ट्रॉमा, जिनको इन्होंने इतने फनी अंदाज में, इतने हिलेरियस वे में कम्युनिकेट किया है या हमें हंसाया है उसके ज़रिए, जो चीज़ शायद उनको उनके लिए वर्स्ट नाइटमेयर रही होगी। ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन द जेल, और वो एक्सपीरियंस शेयर करते करते उन्होंने हमें हंसाया, मतलब जिस चीज़ पे वो रोए उस चीज़ पे हमको हंसाया। आई थिंक इट्स जस्ट एन इनक्रेडिबल स्पेशल। मुझे लगा मेरे को बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इनका कॉन्सर्ट, इनका जो शो है स्टैंड अप शो यहाँ पे होने वाला था, हमने बात भी की थी इनके इसके बारे में, बट फिर वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू सर्टन प्रेशर्स, एंड आई जस्ट विश्ड कि मैं इसको विटनेस कर पाता लाइव। बट आई वुड रियली अर्ज यू टू चेक इट आउट, जाके चेकआउट कीजिए इस स्पेशल को। मुनावर फारूकी का स्टैंड अप स्पेशल है कॉल्ड धंधो, आप चेकआउट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये ना बकवास है या फालतू है या बेतुकी है, मतलब जितना आप सुन सके उतना, तो आप बताइए मुझे कि आपको ये क्यों फालतू लगा या क्या लगा, बट एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो कीजिए, ट्राई तो कीजिए, बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है. द रीज़न आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट दिस इज़ बिकॉज आई रियली वॉन्ट के नेक्स्ट टाइम जब वो उनका शो यहाँ पे अनाउंस हो या कुछ हो तो वो आए यहाँ पे आ सके, बिकॉज ही इज़ रियली एन इनक्रेडिबल स्टैंड अप आर्टिस्ट जो अपने दुख दर्द पे लोगों को हंसा सकते हैं लोटपोट करके. आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल टैलेंट. डेफिनेटली चेक इट आउट एंड लेट मी नो.
1: स्नूप डॉग रिप्रेजेंट दैट पंजाबी. Hey, yo, hit him with this. RDB.

0: accurate traffic.
1: Shower Dome, Shower Tops.
2: 14 hour higher, cool one and stay mostly cloudy today. Motorways easing up nicely. Northern, 25 minutes, Constellation Drive to the city. We're slow on and off from there to the bridge. Northwestern, 30 minutes in from Massey. We're slow from Te Ara to a few heavier patches. Southern, 34 in from Manukau. Fine to Otahuhu, heavy on and off from there. Southwestern, little heavy southbound at Mount Ross School, northbound at Whitty.
1: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
3: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
4: Craving हो रही है उस thick और creamy दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश natural yogurt से जिसका हर स्पून है एकदम delightful 100% vegetarian gelatin and gluten free perfect है smoothies बनाने के लिए tangy dips बनाने के लिए पनीर या chicken marinate करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है naturally delicious always desi available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand bring home the taste of tradition kashish natural yogurt.
5: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See you live for T's and C's.
3: Home. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A victims advocate wants Nationals' pledge to modernise consent laws to go further. If re-elected, the party wants to change legislation so it specifies there must always be a yes. Claire Buckley says there are still interpretation issues.
11: What National have announced is more like tinkering around the edges. If someone says yes at the beginning and then wants to say no, under this law, that would be a grey area immediately.
10: It's feared that importing fresh blueberries, especially organic ones, will lead to serious health issues. Blueberry NZ is calling on MPI to rethink its new standards. Spokesperson Dermot Malley says it's trying to apply the old rules.
12: When you multiply the number of countries, you can't necessarily limit to 5 pests or 6 pests. You need to limit to those pests that are likely to cause significant harm.
10: Southland continues to be rattled by small tremors 4 days on from a large quake. A magnitude 4.4, followed by a 4, shook the region early this morning. Close to 600 people reported feeling them. The US military says yet another service member has been killed after an Iranian attack, this time northern Iraq. It comes a day after an attack on a base in Jordan that killed 2 US soldiers and left another missing. In sport, Ryan Fox is coming to grips with becoming a major golf champion. He birdied the final hole at Royal Birkdale to win the Open Championship by one shot.
13: Your dream of being a major champion, you want to do it, whether you think it's a reality or not. You know, I guess I probably didn't until the last couple of years.
10: Spain are dominating the FIFA World Cup final against Argentina in New Jersey. They've had 7 shots compared to 0, but a short time ago it was nil all after 65 minutes. Football updates brought to you by Hisense.
3: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari good brands.
3: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: आज के दिन तो ढेर सारी बारिश होने वाली है afternoon में, शाम को भी बारिश होने वाली है काफी जगहों पे. Sunset होगा 5:28 को, लेकिन कल का दिन काफी bright, beautiful, sunny दिखा रहा है अभी के लिए. एंड कल का ओवरनाइट इज गोइंग टू बी एज लो एज 6 डिग्रीज. आज का हाई रहेगा 15 डिग्रीज तक का.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
16: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
17: What's going on? क्या बकते हो?
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
15: Good morning, you're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आज मंडे की सुबह और क्या बकते हो सेगमेंट में आपके लिए वियर्ड स्टोरीज यहाँ पे लेकर आनी होती है और मैं खुद ब्लो अप हो रहा हूँ इन वियर्ड स्टोरीज को पढ़कर. क्या आपने मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो 1972 में 14 लोगों ने 10 वीक्स स्नो में सर्वाइव किया था, वो भी अराउंड 18,000 फीट अराउंड ओवर सी लेवल. मैं इतना आज फंबल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे तो मेरे को आवाज़ सुनने में भी डिले हो रहा है. मेरा कान भी ब्लॉक्ड है, नाक भी ब्लॉक्ड है. बट एनीवे अराउंड 45 पीपल थे ऑन अ फ्लाइट. चिलियन कोई एयर था कहीं तो भी, सैंटियागो में हुआ था और 1972 में, जहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया था और लोगों ने होप छोड़ दी थी. लिटरली प्लेन क्रैश के बाद उसमें कुछ लोग सर्वाइव कर दिए थे, कुछ इंजर थे एंड दे सर्वाइव देयर फॉर लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम यार, लाइक फॉर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स उन्होंने वहाँ पे स्नो में बिताए. व्हेन देयर फूड स्टार्टेड रनिंग आउट तब दो लोग निकले पूरे साहस के साथ और उन्होंने जाके हेल्प मांगने की कोशिश की. एंड इट्स क्वाइट एन इनक्रेडिबल स्टोरी यार. मतलब मैं जब सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ा मैंने इसके बारे में, आर्टिकल भी है इसका एक्चुअली में गार्डियन पे, और वहाँ पे उन्होंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे दे हैड टू ऑल्सो रिसॉर्ट टू कैनिबलिज्म, जहाँ पे उनको अपने जो दूसरे साथी थे जिनकी मौत हो गई थी उनको उनका फ्लैश भी खाना पड़ा जस्ट टू सर्वाइव, क्योंकि वो ऐसे ऑल्टीट्यूड पर अटके थे जहाँ पर देर वॉज नथिंग, नो हेल्प. बस उनकी जो प्लेन थी वो टूटी हुई प्लेन थी जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा बहुत वार्म रख रहे थे. जो प्लेन में जो खाना था वो खाना सब खत्म हो गया था और उसके बाद ऑल दे हैड टू डू इज़ रिलाय ऑन द अदर डेड फ्लैश, विच इज़ वेरी सैड. बट द एंड दे सर्वाइव्ड. 14 पीपल वर रेस्क्यूड आउट ऑफ इट आफ्टर 2 मंथ्स. तो आई थिंक दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज जहाँ पे सबने होप छोड़ दी थी. सबने सोचा था कि अरे ये मिसिंग हो गई, ये प्लेन अभी नहीं मिल रही है, ढूंढना भी बंद कर दिया था. वहाँ पे इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम जिंदा रहेंगे. और दो लोग ऐसे थे जिन्होंने लिटरली पूरे वो पीक्स क्रॉस किए और हेल्प फाइंड आउट की वहाँ से, मतलब हेल्प को वहाँ पे ढूंढा मतलब क्या, हेल्प मांगी. एक वहाँ पे हर्ड था, हर्ड संभाल रहा था एक बंदा, उससे जाके वो लोग ने नोट दी उसको एकदम ही ट्रिकी वे में और वहाँ से फिर उनको हेल्प मिली. आई थिंक डेफिनेटली किसी का तो साया होगा उनके सर पे, किसी का तो हाथ होगा तो जाके वो बचे. नहीं तो आप इमेजिन करो यार, आप एक स्नो वाले पीक पे आपका प्लेन क्रैश हुआ है और 2 महीने से ऊपर आप वहाँ पे रह रहे हो और आप सर्वाइव कर रहे हो. इट इज़ क्रेजी. इट्स आई थिंक या क्वाइट अ डिफिकल्ट वन. एनीवे और भी ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूँगा. सुनते रहिए हम

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. कम्युनिटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसकी डिटेल्स भी आप तक हम पहुंचाते हैं. हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो हो रहा है इसी संडे एट A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापा टोयोटोए. यहां पे आप अलग अलग टाइप की स्क्रीनिंग्स के लिए जा सकते हैं. इन्फॉर्मेटिव सेशंस वहां पे होंगे एंड आपको डॉक्टर्स से मिलने का वहां पे मौका मिलेगा, हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने का मौका मिलेगा. तो ज़रूर पहुंच जाइएगा A1 इवेंट सेंटर संडे 26 जुलाई सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक. इट्स इन फ्री इवेंट फॉर एवरीवन. तो यहाँ पे आप ज़रूर जाइए. इसके साथ साथ न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं फॉर द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट. 22 और 23 अगस्त को ये होने वाला है बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में. पंकज मुंगा को आप कॉन्टैक्ट कीजिए जो प्रेसिडेंट है NZCA के ऑन 0210908 5067 पे एंड ही कैन गिव यू मोर डिटेल्स इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट. तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस आर ओपन नाउ. तो न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रही है, जरूर आप इसका हिस्सा बनिएगा.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: हे देखो हम आ गए.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
6: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
7: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
9: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
8: दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
10: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
11: आजकल लेकर इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
14: Hi, and welcome to the 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact, like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and had zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts. At healthnz.govt.nz/HIV.
15: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. वैसे ईरान और यूएस का जो नाटक है वो अभी भी चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स वहाँ पे भी हो रही है. अब रिसेंटली ऐसा हुआ कि यूएस ने, ईरान ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने स्ट्राइक किया है ऑन इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन डार्कोविन न्यूक्लियर प्लांट, कॉलिंग इट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एंड इसलिए ईरान ने भी कुछ जगहों पे, मतलब ईरान ने पहले कुछ जगहों पे एक्चुअली स्ट्राइक किया जहाँ पे यूएस के कुछ ऑफिशियल्स की मौत हुई ट्रेजिकली, और उसके बाद ईरान यूएस ने भी काफ़ी जगहों पे हमले किए. अब यार समझ में नहीं आ रहा है क्रोनोलॉजी वाइज किसने क्या पहले किया है, लेकिन दोनों बोल रहे हैं कि तूने किया तो मैंने किया, मैंने किया तो तूने किया, तूने किया मैंने किया, मैंने किया तूने किया. अपने को अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है समझना. बट एनी वे, इफ़ यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन दिस देन कीप अस पोस्टेड एज वेल, बिकॉज काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है यार, आई विल बी ऑनेस्ट, टू ट्रैक ऑल ऑफ दिस प्रोग्रेस कि कौन कौन कर रहा है, पहले कर रहा है, क्या कर रहा है. उसमें अगर हम कुछ बोलेंगे तो कोई बोलेगा कि अरे तुमको ये नहीं पता, उसने ऐसा किया था, और फिर बाद में सब हिस्ट्री में जाके फिर वर्ल्ड वॉर वन तक लेकर जाते हैं हिस्ट्री को. बट एनी वे, history is important because we really learn a lot of lessons from there. Unfortunately, we are not learning only. That is the problem. But anyway, history is still very important. So, keeping track of what is happening around the world, I think is part of that. Because today's news is tomorrow's history, hai na? So, isliye news track karna bhi isliye zaruri ho jata hai. Maybe one reason why you need to follow the news.
0: Bollywood's most wanted.
3: Gundi khada. सीधा अंदर आऊं,
4: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है। वैसे यहाँ पे बॉलीवुड की खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि देखो इवेंट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं हमारे सुपर सिटी में एंड गरबा सीजन इज गोइंग टू बी ऑन वेरी सून। अगर आपको भी गरबा खेलने का मन है, 1 अगस्त को पहुँच जाइएगा महात्मा गांधी सेंटर। टिकट्स बहुत जल्दी बिक रही है, आपको अगर टिकट्स लेनी है तो फटाफट टिकट ले लीजिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस आउट यार द फर्स्ट गरबा इवेंट ऑफ द सिटी। और गरबा का यहाँ पे जो प्यार है, ओहो, पीपल लव इट एंड आई एम श्योर इफ यू डू ऑल्सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गरबा विद द सेंसेशनल राज गढ़वी, जो यहाँ पे आने वाले हैं महात्मा गांधी सेंटर में ऑन सैटरडे 1 अगस्त। आई डोंट रियलाइज वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, तो इन 2 वीक्स ये शो होने वाला है एट महात्मा गांधी सेंटर। आप टिकट्स इसके फटाफट ले सकते हैं और डबल पास जीतने का भी मौका आपको मिल रहा है यहाँ पे। आपको बस RG लिखकर भेजना है आपके नाम के साथ ऑन 5599 एंड यू माइट बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास। तो RG स्पेस आपका नाम 5599 पर लिखकर भेजिए एंड यू माइट गेट अ डबल पास फॉर गरबा विद द सेंसेशनल राज गढ़वी एट महात्मा गांधी सेंटर।

0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया। वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better month at Farmers.
8: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
9: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
10: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station, so we're always on your way.

0: going on.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. वैसे यहाँ पे बॉलीवुड की खबरें आप तक पहुँचाते हैं. तो रामायण ये मूवी की अभी बातें हो गई है शुरू, क्योंकि इसका एक ग्रैंड स्क्रीनिंग हो रहा था जहाँ पे रणबीर कपूर पहुँचे थे और ये भी थोड़ा फनी बन रहे थे वहाँ पे. तो ग्लासेस पहन कर थे वहाँ पे और पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि सॉरी मैंने ग्लासेस पहने आज क्योंकि मेरी आँखों में इन्फेक्शन है, लेकिन इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है. यार ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब एक्टर्स भी थोड़ा फनी बन लेते हैं और थोड़ा ऐसे क्रिएटिव बनते हैं. दैट्स वेरी गुड टू सी. बढ़िया. काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है अबाउट दिस मूवी रामायण का. बहुत सालों से ये बन रही है मूवी एंड रणबीर कपूर पोर्ट्रे कर रहे हैं श्री राम का रोल. एंड वो कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी समय से ये सोचा था कि वो करेंगे एंड काफ़ी हार्डवर्क उन्होंने किया है और उनके हिसाब से ये पेड ऑफ भी हुआ है. वेल इसके जब हमें फर्स्ट लुक्स और टीजर्स जब दिखेंगे तब हम इसकी वो भी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ. बढ़िया. रामायण माइट बी आउट वेरी सून दिस ईयर होपफुली. बॉलीवुड में और क्या क्या चल रहा है इसकी अपडेट्स भी आपके लिए लगातार हम यहाँ पे देते रहेंगे. ओनली ऑन हम सुनते रहिए 104.2 FM. रोवा ऐप एंड इफ यू आर अराउंड सिटी देन 87.7 FM ट्राई कीजिए. कुछ कुछ जगहों पे आपको काफी क्लियरली सुनाई देगा 87.7 FM पे.

वेल, देखते देखते मेरे कल्टी मारने का टाइम यहाँ पे आ गया है। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। मुलाकात होगी आपसे कल सुबह फिर से। कल भी आपके लिए ब्रेकफास्ट शो यहाँ पे लेकर आऊँगा और फिर वेनसडे से आई विल बी बैक ऑन द ड्राइव शो विथ सैंडी। तो तभी भी आप हमारा ज़रूर शो सुनिएगा और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। वेल, और भी काफ़ी चीज़ें हो रही है आपके इर्द गिर्द जिसके डिटेल्स और अपडेट्स आपके लिए हम लाते रहेंगे। बट इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय नाउ। तो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

सबसे पहले जितने भी लोग अभी फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेन आर द वर्ल्ड चैंपियंस, व्हाट अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक मैच, मज़ा आ गया। मतलब अर्जेंटीना ने आखिरी दम तक बहुत कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट से ये आगे निकल गए स्पेन, और इतना सारा फाइव मिनट्स एडेड, लेकिन 1-0 अगेंस्ट 10 मैन ऑफ अर्जेंटीना। ये फाइनल वन साइडेड बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल था, और ये सिंगल गोल फेरिन टोरेस ने बनाया था, एंड इट हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस वॉचिंग इट हियर एट मीडिया वर्क्स एज वेल, जहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर अर्जेंटीना के थे, कुछ लोग स्पेन को पुश कर रहे थे। तो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोग सुन रहे थे एंड जितने लोग देख रहे थे, स्पेन हैज़ फाइनली वन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर फीफा, और ये फिर से दोबारा से मैं कह सकती हूँ इतना एक्साइटिंग, इतना बढ़िया मैच, मतलब मैं खुद बाहर ही खड़ी हुई देखती चली जा रही थी। बट डेफिनेटली ये पॉइंट्स और ये जो टाइम ऐड होता चला जा रहा था, there was a chance given to Argentina as well, but yes, game में किसी ना किसी की जीत, किसी ना किसी की हार होती है। Good morning to you people, how are you? This is Kashika here, और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मैं आ जाती हूँ my time लेकर। आज excitement में सब कुछ भूल रही हूँ, क्योंकि I was a France this thing supporter, but कोई बात नहीं, Spain की जीत हुई, nothing like it। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, आपके साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए लेट्स जस्ट एंजॉय द मोमेंट ऑफ विनिंग फीफा का। बचाओ क्या? आइडियली ये गाना जो है मस्तों का झुंड, मैं कहना चाहती हूँ दोनों टीम्स के लिए, चाहे वो अर्जेंटीना थी या स्पेन थी। सो वाओ, व्हाट अ फाइट, व्हाट अ डिफेंस, रियली मजा आ गया।

मेरे पास और कुछ नहीं तो ये मोमेंट तो जरूर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: जब मैं एक्सपर्ट होने की बात करती हूँ तो आज वैसे हमारा साथ तो नहीं निभा पा रहे हैं राज प्रदीप सिंह जी, आई थिंक ही इज़ ओवरसीज, लेकिन देर आर मोमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर होते हैं जहाँ यू फील टोटली डिफरेंट इनसाइड। तो ये एक डेली रूटीन होता है, सब कुछ सेम होता है, वो एक फीलिंग जो होती है अलग, वो एक कभी एक्साइटमेंट होता है, कभी डाउन होते हैं, लेकिन कई लोग जो होते हैं इसको एक एक्सपीरियंस कहते हैं ऑफ स्पिरिचुअल एमरजेंसी। ये एक ऑफन चीज़ देखी जाती है जो एक इनर चेंज आपके अंदर आता है, द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग लिविंग, अपने आप को देखते हैं, यू शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू द अदर। कभी कभी आप कंफ्यूज होने लगते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, लोनली फील करने लग जाते हैं, और कभी कभी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सोचते हैं आई नीड दैट मी टाइम। बट इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग कि अगर आपकी पर्सनल जर्नी वैसे सबकी अलग अलग ही होती है, ये एक्सपीरियंसेस आपके ओवरलैप कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल है या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, कभी कभी आप डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं लाइफ में, तो कुछ एक्सपीरियंस जो है आपके कह सकते हैं स्पिरिचुअल इमरजेंसी आपको बता रहे होते हैं। सडनली आप काम पर होते हैं एंड आपको लगता है मुझे और ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, आई डोंट वांट टू वर्क सो हार्ड। इट्स नॉट नेसेसरली दैट आपकी जॉब ठीक नहीं चल रही है, आपका रिलेशनशिप फेल हो चुका है काम पर या कुछ, एक ये इनर रेस्टलेसनेस होती है जो आपको ये कहती है, इंस्टिंक्ट आपका होता है। कभी कभी अचीवमेंट्स में एक्साइटमेंट बहुत आता है लेकिन एक वो सेटिस्फैक्शन आपके अंदर नहीं रहता। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि अगला क्या अचीवमेंट होगा या अगला क्या माइलस्टोन होगा, आप अपने आप को सोचने लग जाते हैं कि क्या है, यू आर मोर इंटरेस्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ द थिंग्स, उसका कनेक्शन क्या, ग्रैटिट्यूड था जेन्युइनली, क्या इस अचीवमेंट से आप खुश हैं या नहीं हैं। तो ये अकम्पलिशमेंट्स आप खुद समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ होती है जहाँ पे साइलेंस जो होता है, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू नो एक कॉन्स्टेंट नॉइज में आप रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू द फोन फॉर एवरी मिनट, कभी कभी आप जस्ट अपने थॉट्स में खुद बैठ रहे होते हैं, कुछ स्लो वॉक्स लेने की कोशिश करते हैं, नेचर के साथ टाइम बिताने की कोशिश करते हैं या इवनिंग का स्काई देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपको थिंग्स यू हैव नेवर क्वेश्चन बिफोर सडनली वो टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए बन जाता है, यानी कि आप पुराने रूटीन्स, जो लॉन्ग हर्ड ओपिनियंस आपको जो बताए गए थे, एक्सपेक्टेशंस जो पिछले कई सालों से आपको हॉन्ट कर रही थी, वो आपको एक ऑटो पायलट पे ले जाती है और फिर आप खुद को पूछने लग जाते हैं क्या जो आज की मेरी चॉइसेस हैं वो सही हैं या गलत हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल अबाउट इट। समटाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज एंड यू डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट हार्डेस्ट जो है, जब खुद को डिस्क्राइब आप नहीं कर पाते, यू डोंट फील द सेम पर्सन जो आप पिछले साल थे, आप बिल्कुल अलग हैं और ये आपकी प्रायोरिटीज जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं, कुछ रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं और कभी कभी यू बिकम लेस इंटरेस्टेड के अरे मैं इससे अप्रूवल क्यों लूँ, इसको क्यों बताऊँ, वाई शुडंट आई डू समथिंग माई सेल्फ। एक पाथ जो आप कम्प्लीटली क्लियर जो नहीं था पहले आपके लिए, सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग या यू आर बिकमिंग समवन हु सीज लाइफ डिफरेंटली मोर देन एनीथिंग। सो दीज पॉइंट्स आर बेसिकली टू लेट यू नो कि किस तरह से आपका एक स्पिरिचुअल इमरजेंसी स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट।
0: माय टाइम विद कशिका।
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में। आप भी तो नहीं।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: Moisture और ventilation का problem लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: What if your next holiday wasn't just a holiday,
7: but the adventure everyone talks about?
6: Imagine chasing waterfalls,
7: wandering lush rice terraces,
6: catching unforgettable sunsets,
7: and relaxing at iconic beach clubs.
6: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
7: discovering incredible temples,
6: tasting world-famous street food.
7: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recoversooner.

0: और फिर शाउट आउट की बात करती हूँ तो दीप फूड से आप जानी एंड देयर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर देयर फ्रॉम विम्स एंटरप्राइज. आप लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं मैंगरी से, तो थैंक यू सो मच एंड दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू. वैसे बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको कहते हैं कि भाई इसे देखिएगा, उसे देखिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा. ऐसे में राहत फ़तेह अली खान ऑकलैंड आ रहे हैं 25 जुलाई के यानी इसी सैटरडे के दिन ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करने के लिए. dryTickets.com के ज़रिए आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं. एंड JK स्टार प्रोडक्शन, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन, शहजादा प्रोडक्शन की पेज पर भी आप चले जाएं अगर आपको टिकट्स खरीदनी हैं.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Wah.
1: How?
0: Adbhut.
1: Are you ready? Shockbusters.
2: Thoda sa hall bana de.
3: So, अगर आपको लगता है दैट यहाँ क्या खास हो रहा है, एक बात तो कहूँगी, आप पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा. ओके, लॉट ऑफ पीपल, अगर आप देखें कि मुरावाई बीच की तरफ जा रहे हैं और जा भी रहे थे ओवर द वीकेंड, और जब वहाँ पर आप गए, कुछ लोगों को कुछ डिफरेंट नज़र आया था. एवरी वीक वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो जाते हैं, जस्ट अगर आप बर्ड्स के फ़ैन हैं तो वहाँ देखने के लिए क्या होता है क्या नहीं. लेकिन ये जो वॉलंटियर्स हैं ये बहुत साइलेंटली कई सालों से काम करते चले आ रहे हैं. जहाँ दो बर्ड्स फ्लू जो है ये डिटेक्ट किए गए न्यूजीलैंड में, तो ये सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ पेट्रोलिंग गोइंग ऑन एट द बीचेस एंड बर्ड्स के साथ में वो उनको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं जब बर्ड्स लैंड करती हैं बीचेस पर. ये बर्ड्स न्यूजीलैंड बीच पेट्रोल स्कीम जो है इट्स रनिंग सिंस 1951, और ये इंफॉर्मेशन जो है ताकि लोग बर्ड्स पॉपुलेशन के बारे में, माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में, वेदर इम्पैक्ट्स के बारे में जो है वो पता चलती चली जाती हैं, और ये हेल्प करते हैं ये इंफॉर्मेशन के ज़रिए टू मॉनिटर द बर्ड फ्लू. तो ये एक रिसर्च जो है, पेट्रोल्स जो है वहाँ पर कंटिन्यूसली रहते हैं एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर डेड बर्ड्स. कोशिश कीजिए, अगर आपको भी कहीं पे ये नहीं मतलब है कि अगर डेड बर्ड है तो ऑटोमेटिकली वो बर्ड फ्लू हो गया, नहीं, तो ग्लव्स पहन के क्वाइटली आप वो देख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि कोई बर्ड अलग से आपको डिफरेंट लग रही है, सो ट्राई एंड रिपोर्ट इट एंड सी इफ़ यू डोंट टच दो सिक बर्ड्स या डेड बर्ड्स. डेफिनेटली आई वुड नॉट एडवाइज़ यू टू डू दैट. बट आप MPI के एग्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज हॉटलाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0800 80 99 66. 0800 80 99 66.

0: नेशन बॉलीवुड के लिए लेकर आते हैं आर्टिकल 370, चंदू चैंपियन एंड श्रीकांत जो बिग विनर्स बने, और ये अवार्ड फॉर सेवरल परफॉर्मेंस टेक्निकल अचीवमेंट्स ये भी दिए गए थे. सो जब मैं बात करती हूँ फिल्म के सक्सेस के लिए, तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है यामी गौतम को लीड रोल के लिए मिला फॉर अ परफॉर्मेंस इन द मूवी आर्टिकल 370, ये पॉलिटिकल ड्रामा. इसमें बेस्ट म्यूजिक का ऑनर्स शाश्वत सचदेव को भी मिला, और साथ साथ कार्तिक आर्यन का नाम गया फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर द लीड रोल, जहां उन्होंने चंदू चैंपियन की बहुत बढ़िया एक परफॉर्मेंस दी थी. कबीर खान की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म थी, और साथ साथ ये एक इंस्पायरिंग डिटर्मेंट एथलीट मुरलीकांत पेटकर के ऊपर बेस्ड कहानी थी. तो ये एक ऑनर जो था इन्होंने शेयर किया विद द सुपरस्टार ऑफ मलयालम सिनेमा, इट्स मामूटी. और साथ साथ ये एक मेजर विनर निकल कर आए श्रीकांत, जो डिक्लेयर की गई एज द बेस्ट फिल्म. ये बायोग्राफिकल ड्रामा जो था, ये स्टोरी टेलिंग एंड ओवरऑल इम्पैक्ट जो इसने क्रिएट किया, वाकई इसमें राजकुमार राव ने अमेजिंग काम किया था. और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, रणदीप हुडा वन द बेस्ट डेब्यू फिल्म फॉर द ऑफ अ डायरेक्टर. ये स्वतंत्रता वीर सरवारकर जो है सावरकर सॉरी और संजय मिश्रा फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर द रोल ऑफ भक्षक. तो ये तो चलिए बहुत अच्छे थे, लेकिन म्यूजिक कैटेगरीज मनोज मुंतशिर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, इनको मिला जाने दो फ्रॉम द मूवी मैदान. और उसके साथ साथ विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी आज की रात फर्स्ट 3-2, मानस चौधरी बेस्ट साउंड डिजाइन फॉर भूल भुलैया 3. तो चलो अगर आपने फिल्म्स को नहीं देखा तो डेफिनेटली पढ़िएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर. ड्रीम, क्या ड्रीम है बताओ.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sirf Rova Par.
1: At Flooring Extra, they don't just sell floors, they transform homes. From luxurious carpets to show-stopping hard flooring, you get expert advice and installers who get it right the first time. They make it effortless. Visit in-store or they'll bring the showroom to you. Measure, quote, install, done. All backed by solid warranties for total peace of mind. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
4: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
5: तो आपका टेक्स्ट आया कि आपने फुटबॉल के बारे में ड्रीम किया. अरे भाई ऑफ कोर्स, कौन नहीं न्यू जर्सी में उसका दिल अटका हुआ था जो फीफा के लिए, फीफा के बड़े फैंस हैं. तो मैं तो यहाँ पर अभी लाइव देख रही हूँ. एंड ये अगर आपने अभी ट्यून इन नहीं किया तो स्पेन बीट्स अर्जेंटीना बाय 1 एंड सेकेंड यू नो टाइम ये इन्होंने वर्ल्ड कप टाइटल जीता भी है. अब फुटबॉल के बारे में आप ड्रीम कर रहे हैं तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रगल जहाँ पे आपको पावर चाहिए होती है और साथ साथ एवरीथिंग यू कैन गेट आउट ऑफ इट. अब ये एक कॉन्फ्लिक्ट आपका रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पर आप कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं जो आपका नहीं है. एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको शायद वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे. एक फुटबॉल का गेम सिंबलाइज करता है द इशूज़ दैट आर हार्ड टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑन. और फुटबॉल कॉमनली लोगों में जो होता है, एक बात बताऊँ किस लिए होता है, जस्ट इन ऑर्डर टू लूज वेट एज वेल. सो इफ़ यू ड्रीमिंग ऑफ फुटबॉल यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर फीलिंग्स. जहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है और आप कुछ एफर्ट्स के साथ कुछ गेन करना चाहते हैं, चलिए अभी तो ये जीत का मोमेंट आप सेलिब्रेट कीजिए.

थ्रोबैक की तरफ तो मैं आपको लेके जा रही हूँ, लेकिन 90s के एक ऐसे ट्रैक के साथ जो फिल्म वाकई ही चली, उसके गाने भी बहुत सारे चले एंड फिल्म में स्टार कर रहे थे गोविंदा। और बाय द वे, जब मैं गोविंदा की बात करती हूँ तो मैं बात करना चाहती हूँ बहुत सैटरडे के दिन जब हमने जाकर कृष्णाभिषेक एंड राजीव ठाकुर को लाइव देखा, क्या मज़ा आया, क्या उन्होंने हंसाया, इट वॉज वर्थ इट ऑनेस्टली। और जब हम आपसे कहते हैं इट वॉज वर्थ इट, इट मीन्स एक्चुअली के वाकई आप सोच सकते हैं उन्होंने आखिरी तक समा बांध के रखा था, ऑडियंस को बांध के रखा था और सब हंसते हुए ही वापस स्माइल करते हुए गए थे। तो चलिए ये गाना डेडिकेट करते हैं इन ब्यूटीफुल से कलाकारों को जो न्यूजीलैंड आए और आकर हम सबका दिल चुरा के लेके चले गए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: हाई तो 15 ओवरनाइट टेम्परेचर ऑफ 7 आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है. कुछ आइसोलेटेड शावर्स जो बाद में दोपहर में हैवी रेनफॉल की तरह बढ़ती चली जाएंगी एंड साउथ ईस्टी हवाओं के साथ साथ इस समय आप 9 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. 5:28 पर सनसेट बताया गया.

Namaskar and a very, very good morning to you people. How are you? And abhi bhi aap is jeet ke rango mein range hue hain. So Spain has beaten Argentina by 1 aur extra time ke saath saath ye world title jeet chuke hain. Aur agar aapne tune in kiya hai aur inki josh ko dekha hai to wow, my god, this was one of the most amazing matches I've seen. और साथ साथ भाई माय टाइम तो मैं आपको बताना ही चाहती हूँ कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मैं ये लेकर आती हूँ. और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक हूँ, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट में मैं पूछना ही भूल गई कि वीकेंड पर क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला कि नहीं निकाला. आई एम वेरी श्योर आपने अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला होगा. इतना कुछ हो रहा है, बट इस आने वाले वीक में भी आई एम श्योर बहुत से लोग कुछ ना कुछ प्लान तो कर ही रहे होंगे. एंड राहत फतेह अली खान ऑफ कोर्स दिस सैटरडे को ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म भी करने वाले हैं. ओके, माय सिक्स वर्ड स्टोरी इज कमिंग अप. सो आप 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं. रीयूज मी, रिसाइकल मी, आप क्या सोच सकते हैं, क्या करना चाहते हैं. व्हाइल आई टॉक टू यू आई कैन सी डोनाल्ड ट्रंप द प्रेजिडेंट ऑफ USA. इन्होंने अभी उनको विजयी भवा बोल के, आई मीन लाइक नॉट इन विजयी भवा, बट उनको उन्होंने वो कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है. ही इज एट द स्टेडियम एंड देर इज सो मच ऑफ फन हैपनिंग हियर. एंड आई रिमेंबर मेट लाइफ एट न्यू जर्सी वेयर आई थिंक मी एंड सैंडी हैड गॉन टू कवर आईफा इन न्यूयॉर्क एट न्यू जर्सी. सो वी नो द स्टेट प्लेस वॉज ह्यूमंगस एब्सोल्युटली.

0: Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Now, something which is very interesting has happened, jo maine, I think, aapko kaafi time pehle, I think in the month of May, I must have reminded you, jahan pe NZTA ka ek proposal tha, aur this has been released, ki kis tarah se digital driver license could work, including the privacy safeguard, jo apply ki jane wali hai, aur how police will verify this. So, agar main baat bataun, ye legislation jo tha, May ke mahine mein pass kiya gaya tha, and ऐसे में ये एक यू नो वॉरफेयर है जो है इस तरह की चीज़ें जो है ये लगता है ऑप्शनल हो जाएगा इन फ्यूचर बट द की थिंग्स विच इज़ देयर इज़ दैट यूज़र्स जो हैं दे विल बी एबल टू स्टोर देयर डिजिटल लाइसेंस ऑन द फोन जहाँ पे जब भी रिक्वायर्ड है इनको आप दिखा सकते हैं व्हेन यू आर स्पेशली इंटरैक्टिंग विद द पुलिस एज फॉर प्रूफ ऑफ एज या बाइंग थिंग्स लाइक अल्कोहल और ऑनलाइन सर्विसेज और यही डिटेल्स जो है एक फिज़िकल लाइसेंस के तौर पर भी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपको प्रोवाइड भी की जाएगी सारी डिटेल्स जो है इस यूज़र्स डिवाइस पे शो स्टोर कर दिए जाएंगे विच मीन्स दैट डिजिटल लाइसेंसेस कैन बी यूज्ड विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन जब आपने चेक किया एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी इट विल कन्फर्म इफ़ इट्स वैलिड और इट्स करेंट और क्या है ये कुछ टेम्पर्ड या फेक जो लाइसेंसेस का लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉबेबली दैट थिंग कैन स्टॉप अब यूजर्स विल गेट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन यू नो ईच टाइम द सिचुएशन अराइजेस फॉर एग्जांपल यू नो अगर आपको एज कंफर्म करनी है तो बस खाली एक बार ही आपने दिखा दिया एंड दैट्स इट ओवर टाइम में डिजिटल लाइसेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवरसीज ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू बी द फर्स्ट प्लेस और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज एंड बिजनेसेस इस मेथड को डेफिनेटली यू नो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ड्राइवर्स कैन ऑब्टेन डिजिटल लाइसेंस बाय रिक्वेस्टिंग यू नो लाइक अपने डिजिटल वॉलेट में इसको ऐड करके एज यू हैव एप्पल और गूगल जो भी है आपके पास है तो ड्राइवर विल देन अपने स्कैन कर सकता है फिजिकल लाइसेंस को और ये एक आपके लिए आपका फेस का इमेज वगैरह एवरीथिंग विल बी इन स्टोर ये लाइसेंस डिटेल्स जो है रिट्रीव कर सकते हैं ड्राइवर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन और आपकी फेस की इमेज और एक यू नो सिक्योरिटी आपके लिए बहुत हो जाती है इफ़ यू आर पुल्ड ओवर यू नो बाय एनी अथॉरिटीज लाइक कॉप्स और समथिंग देन यूजर्स विल जस्ट हैव टू ओपन देयर मोबाइल डिवाइस और वो एक अप्रूव्ड ऐप पे या डिजिटल वॉलेट पर ये नज़र आ जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों की अबाउट प्राइवेसी तो NZTA ने कहा ये डिजिटल लाइसेंसेस जो हैं ये डिज़ाइन किए जाएंगे टू प्रोटेक्ट पीपल्स इंफॉर्मेशन और इंश्योर कि इनकी सेफ्टी हो इन अ ट्रस्टेड वे और किस तरह से इंटाइटलमेंट आपकी इसमें ऐड की जाएगी सो जस्ट लाइक फिजिकल लाइसेंसेस डिजिटल जो ऑल्टरनेटिव्स हैं दे विल मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइवेसी एक्ट एज वेल विच सीम्स टू बी समथिंग नाइस कि आप पॉकेट में लेके कहते हैं जेब में आप सब कुछ लेके घूमते हैं एग्जैक्टली लाइक दैट
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुस्बे टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
5: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum.
7: Ma,
2: ek
7: chawati hoti hai na?
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
7: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
9: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
10: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūtaki, all together Auckland.
11: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
13: TradeDepot.co.nz. Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
14: Being fussy is just knowing what you want. So be more fussy.
15: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
16: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
0: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six-word story.
17: Oi, oi, oi, oi.
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: मेरी सिक्स वर्थ की स्टोरी अभी आप लास्ट मिनट पे अगर भेजेंगे तो देखो मेरे से वो मेरा स्वीपर भी निकल गया. कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी सिक्स वर्थ स्टोरी आ चुकी है. और आई डोंट नॉट नो किस मूड में थे आप, लेकिन आपने ही भेजा है. कर्स्ड विद रीडिंग एवरीबडीज माइंड. कर्स्ड विद रीडिंग everyone's mind. Everybody Nita, everyone's mind. Cursed with reading everyone's mind. Yani ki kya ho gaya iska matlab? Matlab aapko wo pata chal raha hai jo koi kisi ke mind mein kya chal raha hai. Koi kisi ko gaali aapko agar de bhi raha hai to aapko pata chal raha hai. Are tu mujhe gaali de raha hai? Are mujhe to tere mind ke bare mein pata hai. I hope it means that ya andar se kisi ko khushi ho rahi hai aapko gale laga ke to वो भी आपको पता चल रहा है कि ये जेन्युइन है कि नहीं. ओके, सो आप इसे कर्स क्यों कह रहे हैं? आई हैव नो आइडिया, बट डेफिनेटली मैं इतना ही कहूँगी कि माइंड रीडिंग इज़ गुड. लेकिन इस तरह से अगर आप माइंड रीडिंग कर रहे हैं और आपको अपने लिए इमोशंस पता चल रहे हैं, या समटाइम्स दैट कैन बी एक्चुअली क्वाइट चैलेंजिंग.

अगर आप भी कुछ कम्युनिटी में खास कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप buzz@hamfm.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं. इस आने वाली संडे के दिन फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो. ये बिल्कुल फ्री है और AI इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोयोटो में सुबह 10 से 3 बजे तक ये चलने वाला है. यहाँ पे फ्री स्क्रीनिंग है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, ECG, आई टेस्ट और साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग है ऑफ CPR, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इजी योगा और इन्फो आपको मिलेगी ऑन कैंसर स्क्रीनिंग. तो साथ साथ मेंटल वेलबींग के लिए सेल्फ केयर, स्ट्रेस, गैम्बलिंग, अल्कोहल, हेल्थ एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है. अच्छा, इसके साथ 1st to 2nd of August के दिन अखंड रामायण पाठ श्री राम मंदिर में होने वाला है और दिस इज सुबह 7 बजे से. आप जा सकते हैं. न्यूजीलैंड आर्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए श्री राम लीला लेकर आने वाली है 8 अगस्त के दिन और ये काफ़ी एक्साइटिंग होगा जो हम यहाँ पर एक खूबसूरत अंदाज में इसे डेफिनेटली देख पाएंगे.

0: अरे पॉडकास्ट के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं. अब शनि लाल इज ऑन LGBTQ प्लस राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन एंड द रिसर्च फॉर इक्वालिटी. अब ये एक ब्रेकिंग बैरियर्स करके अनफिल्टर्ड में कॉन्वर्सेशन में आए नन अदर देन शनि लाल. इनसे बातचीत की रुजबे एंड सैंडी ने और किस तरह से एक आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन था. डेफिनेटली अगर ये ऑडियो पूरा आप सुनना चाहते हैं तो 5599 पे आप टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं. जस्ट टू लेट यू नो, शनि लाल जो हैं इन्होंने ही इज़ अ प्रोमिनेंट आउटरोआ न्यूजीलैंड जर्नलिस्ट, पोलिटिकल कॉमेंटेटर और एक एक्टिविस्ट भी हैं. और इनको बेस्ट जाना जाता है फॉर हिज कन्वर्शन थेरेपी एक्शन ग्रुप और काफ़ी मूवमेंट्स इन्होंने जो है वो अधिकार जो हैं हासिल करने के लिए, रेनबो यूथ, अधिकार आउटरोआ, ऑकलैंड प्राइड, इस तरह के ट्रस्टी और बोर्ड मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशंस के भी ये रह चुके हैं. तो भाई अगर आपने केतन को नहीं सुना तो जल्दी से सुन ली. जब मैं सोचती हूँ आज मैं केतन का गाना बजाऊंगी तो रुजबे सफ़ायर लगा देता है. अब भाई रुजबे, ये सफ़ायर मैंने देख लिया, सुन लिया, इनफैक्ट मेकिंग भी देखी है, बट डेफिनेटली इस गाने को आप ज़रूर सुनिएगा. अमेजिंगली डन बाय आर ओन रॉक स्टार केतन. सो जरूर YouTube पे भी जाएं, देखिए इनके व्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स.
2: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahape station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhi Nui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats.
5: Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.
6: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
7: Lots.
6: Will they word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
7: Probably.
6: Am I paying for this free coffee?
7: Definitely.
6: Will they talk me into an upgrade? Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
8: True Midas.
9: Hello, officer. What's the problem?
8: I mean, I might have been going a bit fast back there, but I know these roads like the back of my hand. I've been driving them for years. The folks who crash on these bends are like out-of-towners. That's not me. I'm a local.
10: Man, mid-40s. He's taken the corner too fast and slid off the road. Suspected head and spinal injuries. Ambo required. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.

रेस्क्यू में रिसाइकल में कभी कभी हमारे अपने वार्डरोब को जब हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो ऑफन व्हाट हैपेंस इज दैट एक पाइल ऑफ क्लोथ्स होता है जिसे हम चाहते कि हम नहीं पहने, लेकिन इनकी कंडीशन इतनी अच्छी होती है कि इनको डिस्कार्ड करने का मन भी नहीं करता, तो इन्हें कोशिश करते हैं रिक्रिएट करने के लिए, रीयूज करने के लिए। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आपके लिए मैं भी सोच रही हूँ कपड़ों से रिलेटेड इस हफ्ते इस्तेमाल करने के लिए बता सकती हूँ। अपने पुराने कपड़ों को दे कैन बी कट एंड एक्चुअली देखा जाए तो इनको ब्रेड कर सकते हैं आप, इनकी चुटिया बना सकते हैं और इनको यू नो लाइक फॉर योर पेट्स बेसिकली।

ये च्यूएबल जो टॉयज़ होते हैं, इन फैब्रिक्स को आपको स्ट्रिप्स में काट लेना है, इनको ब्रेड करना है और फिर नॉट कर देना है एट दी एंड। ये होममेड टॉयज़ जो हैं डॉग्स के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट बन सकता है। घंटों आपके जो पेट्स हैं इनके साथ खेल सकते हैं, इनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। भाई ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें मिस आउट नहीं करनी चाहिए, वो है कि अगर आप हमें रोवा ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ बोनस फॉर अस, क्योंकि रोवा ऐप इतनी सारी चीज़ें लेकर आता है। नाउ अगर मैं कहूँ कि हमें 60s और 70s के गाने याद आते हैं बहुत, तो भाई आप रोवा ऐप पे हमारा हम रिवाइंड सुन लीजिए। अगर 80s के ट्रैक्स के साथ अभी भी आपका मन अटका हुआ है तो हमारा 80s का जूक बॉक्स सुन सकते हैं। फिजी कीर्तन भजन आप 24/7 ये हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सुन सकते हैं। चढ़दी कला पंजाबी हिट्स हो गए, और अगर आप बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट की बात करें तो हम फिजी कीर्तन संग्रह डेफिनेटली आप सुन सकते हैं। एक नया पूल गानों का ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है, और साथ साथ राहत फ़तेह अली खान ये तो खैर इस हफ्ते आ ही रहे हैं परफॉर्म करने के लिए हमारी सुपर सिटी में, तो वाई नॉट इनके सूफीज़ इनके कव्वालीज़ का आप आनंद उठाएँ और इनका एक स्पेशल म्यूज़िक स्टेशन आप इंजॉय भी कर सकते हैं।

तो भाई अब यहाँ से मुझे थ्रो आउट करने का टाइम आ चला है, यानी कि केतन बस जल्द आपका साथ निभाने के लिए आने वाले हैं स्टूडियोज में। लंच बॉक्स में इनका साथ जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ से चलती हूँ अभी, क्योंकि कल सुबह दोबारा आपसे मुलाकात जो करनी है, प्रेप जो करना है, और मैं चाहती हूँ कि अब आप कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला यह हफ्ता आपके लिए और भी जोरदार, दमदार, शानदार बना रहे, बस यही मेरी मनोकामना है। तो कल का दिन कहलाएगा मंगलवार, आपके दिन को और भी मंगलमय बनाने के लिए कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए माय टाइम लेकर मैं सुबह 10 बजे फिर से आपके लिए स्टूडियोज़ में आ जाऊंगी। तो अब के लिए आप अनुमति दीजिए और कल आपसे दोबारा से मेरी मुलाकात होगी। लुक आफ्टर योरसेल्फ, दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ।

0: मेरी आवाज गूंजेगी।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: आ गया, आ गया, आ गया।
3: नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत सो कॉल खूबसूरत दिन पे खूबसूरत शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो पे, हम 104.2 एफएम के जरिए, जहां पे हम चलाते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गीत। आपकी लाइफ में कोई है ऐसा इंसान जिसका नाम ही गीत हो? गीत, GEET। मेरी लाइफ में 5 गीत है, 5 गीत, जी हाँ। बट यस, उस गीत जो एक मेरा दोस्त है गीत, उसके उनकी बहन जो है उनका नाम है वाणी बोलते हैं वैसे, लेकिन वो वाणी करती है। सो यस, वाणी उनका नाम है और उनका नाम गीत है। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव अनदर वन विच इज उनके पापा, जिनका नाम है आई थिंक व्हाट कुछ ऐसे नाम था, मैं उनके पापा का नाम भूल गया, बट उसकी मम्मी का नाम ताल है, यानी कि पूरी फैमिली जो है वो एकदम म्यूजिक से लगी हुई है, म्यूजिक से बिछी हुई है। बट दैट्स ऑल फ्रॉम दैट स्टोरी। बट यस, अगर आपके लाइफ में भी हैं गीत तो बताइए मुझे। बट यस, सभी के लिए